0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद वसीफुद्दीन डागर का ध्रुपद गायन। राग था अहिर भैरव। आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे थे मोहन श्याम शर्मा। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। सब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन

0: चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: तिरंगा, हर घर तिरंगा।
0: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
3: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित ये यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। तिरंगे की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंह गाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
4: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

0: ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार तीन दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून तरफ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले दो दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जल स्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। आईएमडी ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाश समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।

0: श्रवण यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, जेपीएससी के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मॉनसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक, मेधा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के दोनों सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस पीपल टू जॉइन हर घर तिरंगा मूवमेंट एंड होइस्ट द ट्राइकलर एट होम्स। इंडिया क्रॉसेस 300 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Mann Ki Baat program on Akashwani last month, Mr. Modi urged people to hoist the tricolour at homes.
4: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सलाहियत 300 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत और अमेरिका कोची में जनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने अब नए हुरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समुद्री रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज रखी है। और महाराजा उरुमुंग पांडियन ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर में अपने तआवुन के इज्तिमाई अहद का एआदा करने की अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नीज ये मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे वसीला है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहते हुए मसर्रत का इजहार किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं क्योंकि इसकी 150वीं सालगिरह है। पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में जनाब मोदी ने अवाम से अपील की थी कि वो अपने घरों पर तिरंगा परचम लहराएं।

0: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
1: पेश है एक रिपोर्ट।
2: सकाफत की वजारत ने कहा है कि इस साल हर घर तिरंगा में मुहिम तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा प्रोग्रामों और मार्शल के गीत के जरिए मुल्क भर में सड़कों और घरों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करेगी। वजारत ने कहा है कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह शहरियों को मौका भी फराहम करेगी ताकि वो यौम आज़ादी के त्यौहार के हिस्से के तौर पर कौमी नगमे का गाकर जश्न मना सकें। इस साल की तकरीबात की एक अहम खसूसियत सूर्य पथ तिरंगा होगी, जिसे वजारत ने अपनी नौइयत का एक पहला कदम बताया है, जिसका मकसद दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को तिरंगा की एक आलमी तकरीब में यकजा किया जा सके। वजारत ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने घरों में कौमी परचम लहराएं और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी सेल्फीज अपलोड करें। हर घर तिरंगा मुहिम यौम आज़ादी की तकरीबात से वाबस्ता मुल्क की अवामी शिरकत की एक पहल के तौर पर उभरी है, जिससे शहरियों को कौमी परचम की नुमाइश करने और मुल्क के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करने का हौसला मिलेगा। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बीड, थाने और बुलढाणा समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जिलों में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा, खिलाड़ियों, एनसीसी कैडेट्स और शहरियों ने पूरे जोशो जज्बे के साथ शिरकत की। थाने में एक साइकिल रैली के जरिए माहौलियात के तहफ्फुज और सेहतमंद जिंदगी को फरोग दिया गया। खेमगांव में टीवी के बारे में और रैलियों और नुक्कड़ नाटक के जरिए मनुष्यात से पाक भारत के तई बेदारी पैदा की गई। इस मुहिम का मकसद हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देना और यौम आज़ादी की तकरीबात में आवाम की शिरकत की हौसला अफजाई करना है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: बिहार में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज पटना में एक बड़ी तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि वजीर आला सम्राट चौधरी इस मुहिम की क़यादत करेंगे।
4: हर घर तिरंगा मार्च आज सुबह 10 बजे से जेपी गोलम्बर से शुरू होगी, जो करगिल चौक तक जाएगी। इसका एहतमाम फन, सकाफत और नौजवानों के महकमे की तरफ से किया गया है। तिरंगा यात्रा में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। इसी दौरान इस मुहिम के तहत जीविका के जरिए रियासत में हर ब्लॉक को 4000 तिरंगा परचम फराहम किए गए हैं। मुहिम के हिस्से के तौर पर वंदे मातरम के गीत, खून के अतिया के कैंप, तिरंगा नुमाइशों, तिरंगा के साथ सेल्फी और तिरंगा रंगोली समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों का भी एहतमाम किया जाएगा। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: मगरबी बंगाल में हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर आज कोलकाता में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी जुलूस की क्यादत करेंगे, जो घोस्तों पलसरानी से दोपहर में शुरू होगी और विक्टोरिया मेमोरियल पर खत्म हो जाएगी। मुख्तलिफ महकमों के वज़रा, इंतजामिया के सीनियर अहलकार और शहरियों की एक बड़ी तादाद की इसमें शिरकत मुतवक्के है। वज़ीर आला ने उम्मीद जाहिर की है तकरीबन 50,000 लोग यात्रा में शिरकत करेंगे। कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने जुलूस के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। मणिपुर ने भी मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ हर घर तिरंगा मुहिम के इनेकाद में शिरकत की। ये प्रोग्राम 17 अगस्त 2026 को इख्तिताम पजीर होगा। इस मुहिम का मकसद भारत के इत्तेहाद का जश्न मनाना और तिरंगा के तई गहरे एहतराम का मुजाहरा करना है। इस मुहिम के दौरान शहरी अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। मणिपुर के वजीर आला यमनाम खेमचंद मगरबी इम्फाल के संगजिमी में अपनी रिहायशगाह से इस मुहिम में शिरकत करेंगे। उन्होंने अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो सबसे पहले खुद को भारतीय, उसके बाद मणिपुरी समझें। भारत गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली की पैदावार 300 गीगावाट की सलाहियत से आगे बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस उसूलियाबी से 2030 के 500 गीगावाट सलाहियत के निशाने में से 60% से ज्यादा हिस्सा पूरा हो चुका है। नई और बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की वजारत ने कहा कि मुल्क की बिजली पैदावार की कुल सलाहियत में गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली सलाहियत का हिस्सा 54% से ज्यादा हो चुका है। वजारत ने यह भी कहा कि साफ सुथरी तवानाई की पैदावार में बहुत से शोबों का तआवुन रहा है। गैर रिवायती ईंधन की मजमूई सलाहियत में शमसी तवानाई इस मैदान की तरक्की में पेश पेश रही। वजारत के मुताबिक 2025-26 के दौरान मुल्क में गैर रवायती ईंधन की 55.29 गीगावाट की सलाहियत का इजाफा हुआ है। बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की सलाहियत में भी तेज रफ्तार तरक्की का पता चलता है। 2014-15 में यह सलाहियत

0: 191 अरब यूनिट थी, जबकि 2025-26 में ये 477 अरब यूनिट से ज्यादा हो गई। न्यूज डेस्क से आनंद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
1: लोकसभा में आज 4 बिल पेश किए जाएंगे, इनमें ट्रिब्यूनलिज्म में इस्लाहात का 2026 का बिल, कानों और मादनियात के फरोग और मुतालिका जाब्तों में तरमीम का 2026 का बिल, केरला का नाम तब्दील किए जाने से मुतालिक 2026 का बिल और इमदाद बाहमी के फरोग में कौमी कॉरपोरेशन में 2026 का बिल शामिल है। राज्यसभा में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैंकरों के रिकॉर्ड के शवाहिद से मुतालिक 2026 का बिल पेश करेंगे। इसमें बैंकरों के रिकॉर्ड को कानूनी शवाहिद के तौर पर पेश करने और इसे मौजूदा दौर की डिजिटल बैंकिंग के कामकाज के मुताबिक बनाने के लिए कहा गया है। ऐवान में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम का 2026 का बिल भी पेश किया जाएगा। इस बिल में रकम की अदायगी और तस्वीर के निजाम से मुतालिक 2007 के कानून, इनकम टैक्स 2025 के कानून और मालियात से मुतालिक 2026 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। इन दोनों बिलों को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से पेश किया जा रहा है। जेपीएससी जेएसएससी इम्तिहानात में मुबैना बदउनवानियों पर तलबा और झारखंड सरकार के दरमियान तीसरे दौर की बातचीत के बावजूद तातुल अब भी जारी है। तलबा ने हुकूमत की तजावीज को पूरी तरह तस्लीम नहीं किया है और आज विधानसभा के घेराव के अपने प्रोग्राम पर बजिद हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: झारखंड में एहतजाज का आज 17वां दिन है। तलबा और झारखंड सरकार के दरमियान बातचीत में मुबैना बदउनवानियों की तहकीकात, इम्तहानात की मनसूखी, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई और इम्तहान के निजाम में इसलाह पर तवज्जो मरकूज की गई। हुकूमत ने 14वीं जेपीएससी प्रीलिमिनरी इम्तहान मनसूख करने से इत्तेफाक किया है और तफसीली तहकीकात का हुक्म दिया है। सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक ने इस सिलसिले में एक शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी की है। उन्होंने कहा है कि अभी तक 19 मुल्जिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है और डिजिटल शवाहिद भी काफी तादाद में इकट्ठा किए जा चुके हैं। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: तलबा के जारी मुजाहिरों के पेशी नजर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी के 3 मुलाजमीन ने अपने उहदों से इस्तीफा दे दिया है। जेपीएससी के 3 मेंबरों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनीमा हंसा ने कल गवर्नर संतोष कुमार गंगवार को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। भारतीय बहरिया और अमेरिकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरका मशक ईओडी 2026 आज से 14 अगस्त तक कोची में वाकई जुनूबी बहरी कमान में मुनाकिद की जाएगी। वजारती दिफा के मुताबिक इस बाहमी मशक का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी तआवुन और अमली हमा आहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। 5 रोजा इस मशक के दौरान माहिरीन के दरमियान तजुर्बात और मालूमात का तबादला, मुश्तरका तरबियती सरगर्मियां, मुख्तलिफ आलात का अमली मुजाहरा और सूरत हाल पर मबनी अमली मशकें की जाएंगी। वजारती दिफा के मुताबिक भारतीय और अमरीकी बहरिया साल 2005 से ये मुश्तरका मशकें करती आ रही हैं। आइंदा होने वाली मशक इस सिलसिले की 8वीं कड़ी होगी। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आज से पहल दिल्ली के कुछ इलाकों में मोतदिल बारिश की पेशगोई की है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है क्योंकि बहुत से अजला सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं, जबकि आने वाले दिनों में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल एक बड़ी तशवीश का मसला बनी हुई है। ताज के इलाकों में शदीद बारिश के बाद दरियाओं के पानी में फिर इजाफा हो रहा है। बालासोर में जालाकार दरिया में पानी के इजाफे से बस्ता में सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। केंद्रपाड़ा के बहुत से इलाके भी मुतासिर हुए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी शदीद बारिश के सबब मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। रूस ने बहरे हिंद के लिए एक रेलवे रास्ते का पता लगाने की तजवीज रखी है, जिससे भारत का अहम बहरी रास्तों पर इन्हिसार कम होगा। रूस के नायब वजीर आजम मारात खुसुलीन ने बताया कि मुतबादिल रास्तों से आबनाए हुरमुज और आबनाए फास्फोरस समेत 2 क्लीदी आबी गुजरगाहों से जुड़े खतरनाक रास्तों से गुजरने के खतरे में मदद मिल सकती है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जनाब खुसुनील ने बताया कि तुर्कवानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से गुजरने वाले रेल रास्तों का पता लगाया जा सकता है। ताकि भारत को आसानी से रसाई फराहम की जा सके।

0: सके। ये तजवीज मगरबी एशिया में जारी जंग के पेश नजर सामने आई है, जिसमें आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों के गुजरने में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। मुजवजा रेल रास्तों से वसी जोग्राफियाई, सियासी और माशी मुजमरात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये वस्ती और जनूबी एशिया के जरिए बहर हिंद के लिए रूस को एक मुतबादल बहरी रास्ता फराहम हो सकता है। भारत ने बोलीविया को जिंदगी बचाने वाली और लाजमी दवाएं रवाना की हैं। भारत ने ये 8 मैट्रिक टन दवाओं की खेप हिफ्जान सेहत के तई सलाहियत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रवाना की हैं। वजारत खारजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इजहार यकजहती और मुश्तरका तरक्की के जरिए दूसरे मुल्कों को तआवुन जारी रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में भारत के वेट लिफ्टर महाराजन अरमुगा पांडे ने चांदी का तमगा जीता है। भारतीय वेट लिफ्टर ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने मजमूरी तौर पर 285 किलोग्राम वजन उठाकर बेहतरीन जाती रिकॉर्ड बनाया। वियतनाम के हुआंग टेक ने कुल 291 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने भारत की जंग आजादी के तनाजुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि भारत छोड़ो तहरीक में शामिल लोगों की कुर्बानियों और उनका अज़्म आने वाली नस्लों को मुतासिर करता रहेगा और हर भारतीय शहरी में आजादी के तई नई तवानाई पैदा करेगा। रोजनामा प्रताप ने अगस्त क्रांति के तनाजुर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन के इस बयान को सफाई अव्वल पर शाया किया है कि भारत एक है और हमेशा एक ही रहेगा। इसी अखबार की एक और खबर के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मुसल्ला अफवाज ने बेमिसाल शुजात का मुजाहरा किया और भारत अपने शहरियों की सलामती और उनकी हिफाजत के लिए अहदबंद है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मुस्तफिदीन को 1 करोड़ से ज्यादा मकानात उनके सुपुर्द किए गए, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सलाहियत 300 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत और अमेरिका कोची में जनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने आबनाए हुरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समुद्री रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज रखी है। और महाराजा उरुमुग पांडे ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

0: Hatten wir.
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मधुरिमा।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
3: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़ी गई,
3: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें
8: 0542227658,
9: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: मधुरिमा कार्यक्रम के आज के सफर में आपके साथ है ज्योति स्वरूप। नमस्कार। पवित्र पावन सावन का ये महीना और साथ ही में सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर का दिन होता है। दोस्तों, हर उत्सव और त्यौहार में खाने पीने, पहनने ओढ़ने और मिलने जुलने का महत्व होता है। ईश्वर से संबंधित आयोजनों में व्रत और तपस्या का ही महत्व है। सावन निराकार शिव की आराधना का महीना है। कहते हैं कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु चार मास के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान वे सृष्टि को पालने का काम भोले शंकर को सौंप देते हैं। चतुर्मास शुरू होते ही पर्वों और त्योहारों की शुरुआत सावन में भगवान शिव की आराधना से होती है।

सावन और सोमवार का शिव की उपासना से गहरा अटूट संबंध है। मानव जीवन में प्रकृति का कल्याणकारी रूप भोजन, वायु, जल और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अनेक स्वरूपों में तन मन को पोषण के साथ साथ ताजगी और स्फूर्ति का संचार करती है।

शिव से तात्पर्य है कल्याण। सृष्टि में परमात्मा रूपी शिव स्थित है, जो इस संसार को भौतिक और आध्यात्मिक रूप से सुंदर बनाते हैं। शिव सत्य और सुंदर को जोड़ने वाले सेतु हैं।

प्रकृति के देवता हैं भगवान शंकर, जिनका दूसरा अवतार है पिपलाद। इस रूप में भी भगवान शंकर ने प्रकृति से प्रेम करने की प्रेरणा दी है। भगवान पिपलाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। उन्होंने तब भी पीपल के वृक्ष के नीचे ही किया, पीपल के पत्तों को ही भोजन बनाया। इसका अर्थ यह है कि हमें भी हमेशा प्रकृति से जुड़ा रहना चाहिए। सावन का ये रिमझिम हमें यही संदेश देती है।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अलीगढ़ और भदोही जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल, आलेख और स्वर है रजनीश सिंह का।
1: कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय KGBV अथरौली अलीगढ़ की छात्राओं के लिए 5 अगस्त का दिन अविस्मरणीय रहा। शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंची छात्राओं ने लोकतंत्र के इस मंदिर का भ्रमण कर न केवल इसकी गरिमा को निकट में महसूस किया, बल्कि यह भी जाना कि प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार संचालित होती है। इस दौरान उन्होंने समझा कि जनहित से जुड़े विषयों पर विधानसभा में किस प्रकार चर्चा होती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।

0: से मुझे लगता है काफी राहत इसमें मिलेगी और जो एनिमल्स हैं उनकी भी केयरिंग और उनका रखरखाव हम लोग अच्छे से कर पाएंगे।
1: अलीगढ़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर

चार गांवों की भूमि के अभिलेख की जांच इस सप्ताह पूरी हो जाएगी। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज से होते भदोही ज्ञानपुर और राय तहसील के 52 गांवों के 35 किमी क्षेत्र से होकर मिर्जापुर और सोनभद्र को जोड़ेगा। सर्वे मिट्टी की जांच हो चुकी है। 333 किमी लंबा एक्सप्रेसवे चार राज्यों की सीमाओं को जोड़ रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि तीनों तहसील में 6 लेन के हिसाब से जमीनों का नक्शा खतौनी कितनी सरकारी जमीन है कितनी भूमि दे रहे कितने किसान इसके जल में आ रहे हैं इन सबकी रिपोर्ट तैयार होने पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इस परियोजना के तैयार होने से पूरी यूपी में व्यापार पर्यटन और लॉजिस्टिक को नई रफ्तार मिलेगी। बहुदेव सब्जी मसाले की खेती और किसान की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार पैसा देगी। किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों को लेकर प्याज की खेती करेंगे और शासन की ओर से उन्हें भारी भरकम अनुदान मिलेगा। खेती के लिए लक्ष्य तय कर दिया गया तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में लक्ष्य के लिए उद्यान विभाग ने किसानों के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। संकर साग भाजी में 10 मसाला क्षेत्र का विस्तार कार्यक्रम में 63 हेक्टेयर प्याज की खेती कराने का लक्ष्य मिला है। जिला उद्यान अधिकारी ममता सिंह यादव ने बताया कि संकर साग भाजी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत 10 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य तय है। इसमें प्रति हेक्टेयर आने वाले कुल लागत 60,000 में 40% 24,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। काशी नरेश विश्वविद्यालय परिसर में महाविद्यालय से विश्वविद्यालय तक अंतक यात्रा आयोजित संगोष्ठी मुख्य अतिथि सांसद विनोद बिंद ने कहा कि किसी विश्वविद्यालय की पहचान वहाँ के शोध और नवाचार से होती है। उन्होंने युवाओं से भारतीय संस्कृति परंपरा के साथ सकारात्मक सोच अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने का आह्वान किया। तब विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने बताया कि 15

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार सोनाली लाल पुत्री संजय लाल निवासी डूही सूही थाना चकिया जनपद चंदौली, जिनकी उम्र 21 वर्ष है, ये 15 जुलाई 2026 सुबह 8 बजे से लापता हैं। इनकी लंबाई 4 फीट 9 इंच है। लापता होने के समय इन्होंने पहना हुआ था सफ़ेद रंग और लाल रंग का सलवार पहने हुई थी। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना चकिया को सूचित करें या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें।

इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना बलुआ को सूचित करें या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।

0: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में होगा उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र।

0: और अब आखिर में आप समाअत फरमाइए डॉक्टर जफरुल्ला अंसारी से उनका कलाम।
1: गज़ल का मतलब पेश खिदमत है।
2: इरशाद
3: जी सर।
1: रस्म शहर मोहब्बत निभाते रहे,
3: रस्म
1: शहर मोहब्बत निभाते रहे, रस्म शहर मोहब्बत निभाते रहे, चोट खा के भी हम मुस्कुराते रहे।
3: वाह वाह वाह, चोट खा के भी हम मुस्कुराते रहे।
1: रस्म शहर मोहब्बत निभाते रहे, चोट खा के भी हम मुस्कुराते रहे। शाम से सुबह तक ऐ सुकूने जिगर, शाम से सुबह तक ऐ सुकूने जिगर, तक ऐ सुकूने जिगर, तेरी यादों में आंसू बहाते रहे। मुझको उनसे न कोई शिकायत रही, मुझको उनसे न कोई शिकायत रही, वो सितम पर सितम गरचे ढाते रहे। मुझको उनसे न कोई शिकायत रही, वो सितम पर सितम गरचे ढाते रहे। वो न आए मगर हम उन्हीं के लिए,
3: वो न
1: आए मगर हम उन्हीं के लिए, उम्र भर अपने घर को सजाते रहे।
2: बहुत अच्छा।
1: वो न आए मगर हम उन्हीं के लिए, उम्र भर सजाते रहे। कैसे वो बात उन पर आया हो गई,
3: कैसे
1: वो बात उन पर आया हो गई, जिसको खुद आपसे भी छुपाते रहे। कैसे वो बात उन पर आया हो गई, जिसको खुद आपसे भी छुपाते रहे। कुछ भी परवाह मेरे दिल की तुमने न की, कुछ भी परवाह मेरे दिल की तुमने न की, रोज ही एक नया गुल खिलाते रहे। कुछ भी परवाह मेरे दिल की तुमने न की, रोज ही एक नया गुल खिलाते रहे। ऐ मेरे चारागर तुम बनामे दवा, ऐ मेरे चारागर तुम बनामे दवा, जहर का जाम रहे। ऐ मेरे चारागर तुम बनामे दवा, जहर का जाम मुझको पिलाते रहे। रंजो गम ही अता जिसने हमको किया,

0: तुम बनामे दवा,
1: है मेरे चार अगर,
0: ऐ मेरे चार अगर तुम बनामे दवा, जहर का जाम रहे।
1: वाह वाह वाह, क्या
0: शेर है। ऐ मेरे चार अगर
1: तुम
0: बनामे दवा, जहर का जाम मुझको पिलाते रहे, रंजो गम ही अता जिसने हमको किया, रंजो गम ही अता जिसने हमको किया, हम उसे भी गले से लगाते रहे। रंजो गम ही अता जिसने हमको किया, हम उसे भी गले से लगाते रहे। शर्म से पानी पानी मैं होता रहा, शर्म से पानी पानी मैं होता रहा, वो जो एहसान अपना गिनाते रहे। शर्म से पानी पानी मैं होता रहा, वो जो एहसान अपना गिनाते रहे। गौहरे अश्क पलकों पे शामे अलम, गौहरे अश्क पलकों पे शामे अलम, जुगनुओं की तरह जगमगाते रहे। गौहरे अश्क पलकों पे शामे अलम, जुगनुओं की तरह जगमगाते रहे। जिनकी ताबीर बस में हमारे नहीं,
1: जिनकी ताबीर
0: बस में हमारे नहीं, ख्वाब ऐसे हमें वो दिखाते रहे। जिनकी ताबीर बस में हमारे नहीं, ख्वाब ऐसे हमें वो दिखाते रहे। था जो मद्दे नजर पास अहदे वफा, था जो मद्दे नजर पास अहदे वफा, तेरी महफिल में हम आते जाते रहे। था जो मद्दे नजर पास अहदे वफा, तेरी महफिल में हम आते जाते रहे। रोना गाना हमारे मुकद्दर में था,
1: रोना
0: गाना हमारे मुकद्दर में था, इसलिए रोज हम रोते गाते रहे। वाकियाते खजानी को हम भूल कर, वाकियाते खजानी को हम भूल कर, जश्ने फसले बहारा मनाते रहे। वाकियाते खजानी को हम भूल कर, जश्ने फसले बहारा मनाते रहे। ऐ जफर हम उसे दूर से देख कर, ऐ जफर हम उसे दूर से देख कर, प्यास अपनी नजर की बुझाते रहे। रस्म शहरे मोहब्बत निभाते रहे, चोट खाके भी हम मुस्कुराते रहे।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: अभी आप डॉक्टर जफरुल्ला अंसारी से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। इस प्रोग्राम को आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार किया गया और लखनऊ मरकज से नशर किया गया।
3: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।

0: साथ आज का उर्दू प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। इस प्रोग्राम को आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज़ पर तैयार किया गया और लखनऊ मरकज़ से नशर किया गया।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत का।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं राम नारायण मौर्या और साथी। सबसे पहले आइए सुनते हैं कजरी कावर गीत उनकी आवाज़ में।

ये कजरी मिर्जापुरी आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में रामनारायण मौर्या और साथियों की आवाज़ में। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम झंकार।

समवेत स्वर में बंकिम चंद चटर्जी की ये रचना आप सुन रहे थे आनंद मठ फिल्म से। अब आइए सुनते हैं मंजिल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत

समवेत स्वर में बंकिम चंद चटर्जी की ये रचना आप सुन रहे थे आनंद मठ फिल्म से। अब आइए सुनते हैं मंजिल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है योगेश ने, संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

अब आइए सुनते हैं शिवहरि के संगीत निर्देशन में, ये गीत है लम्हे फिल्म से, आवाज़ है लता मंगेशकर और इला अरुण की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

चश्मे बद्दूर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे येसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज़ में। इंदु जैन ने इस गीत को लिखा था, संगीत राजकमल का। जब वी मेट फिल्म से अब आइए सुनते हैं उस्ताद राशिद खान की आवाज़ में ये गीत। इस गीत को लिखा है संदेश शांडिल्य ने, संगीत प्रीतम का है।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स। वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है आपके फरमाशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। और आज ये कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार और सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो विभिन्न पर्वों का समय शुरू हो गया है, जब से सावन महीना शुरू हुआ है दोस्तों, है ना। और अभी सबसे बड़ा पर्व आ रहा है स्वतंत्र

स्वतंत्रता दिवस का, और हम सब मना रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और घर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। तो आइए हम सब बढ़ चढ़ कर इस अभियान में भाग लें और देश की तिरंगे की आन बान शान को सलाम करते हुए वंदे मातरम करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे बंकिम चंद चटर्जी का लिखा हुआ, यह गीत संगीत हेमंत कुमार का था, आवाज़ लता मंगेशकर की थी। इस गीत को हमने लिया था फिल्म आनंद मठ से। सुनने के लिए हमें पत्र लिखा था आप सभी श्रोताओं ने, रीता केसरी, संगीता केसरी, रंगोली केसरी, कशिश केसरी, टिया केसरी और इनके मम्मी पापा त्रिलोचन घाट वाराणसी से, सरायनका रामनगर से शमीम भाई, शबाना, सहाना, सोनम, शंश, आकिब, बलम, रफीक, रिजवाना, बड़ी गबी वाराणसी से अरुण कुमार मालवी, दर्द शशि मालवी, आकाश मालवी, हर्ष अनमोल मालवी, श्लोक यहीं से श्री त्रिभुवननाथ मालवी, मंजू मालवी। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने, महाराष्ट्र बीट शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, सरला प्रकाश। करोता लोहता वाराणसी से अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, मोना प्रजापति, राहुल प्रजापति। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। धनबाद से ये पत्र भेजा है प्रभात रंजन प्रसाद, शोभा रंजन प्रसाद, रितेश रंजन प्रसाद, स्वाति रंजन प्रसाद, प्रतिभा रंजन प्रसाद। गोला बाजार बक्सर से आप हैं

श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, मोहित और रोहित। पतली गली वाराणसी से मुश्ताक सुलेमानी, शाहिद मुश्ताक वाला, साजिद मुश्ताक वाला, नासिर मुश्ताक वाला, जावेद मुश्ताक वाला। अनारबाग बनारस से गुड़िया सुलेमानी, शाहिदा सुलेमानी, रजीना सुलेमानी, आयशा सुलेमानी, साकिब सुलेमानी, जाहिद सुलेमानी, हसीना सुलेमानी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से ये पत्र भेजा है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। गढ़नौखा लालगंज बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, संदेश कुमार चौहान, अनुराग कुमार चौहान, अनिल कुमार अकेला और बड़क चौहान। जमानिया गाजीपुर से आप हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, शुभम जायसवाल, शिवम जायसवाल। जमानिया स्टेशन से एसपी जायसवाल, राजेश जायसवाल, अवधेश जायसवाल, डिंपल जायसवाल। स्टेशन रोड जमानिया से आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल, दिलीप जायसवाल, दुर्गेश जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव जायसवाल, आर जायसवाल। आप सभी सुनना चाहते हैं आपकी कसम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत आर डी बर्मन का। तो सावन का ये दूसरा सोमवार आ गया तो हम ये गीत आपको सुनवाते हैं और शिव जी को नमन करते हैं, बोलते हैं ओम नमः शिवाय।

आप सुन रहे थे आपकी कसम फिल्म का गीत। कार्यक्रम में अगला गीत सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंशुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, पटेल नगर मुगलसराय से शशि सिंह, आस्था सिंह और आकाश सिंह, जिला अशोकनगर ईशागढ़ तहसील मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा, नारायण सिंह, मन कोबाई, निशा कुशवाहा, प्रियंका, ईशिका, कपिल कुशवाहा, ब्रजभान कुशवाहा, बालाराम मेहर, नरेश प्रजापति, लक्ष्मण रिकवार, दातार सिंह शेखावत, करोता लोहता वाराणसी से अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिवप्रकाश प्रजापति, मोना प्रजापति, राहुल प्रजापति, वलीदपुर मढ़ा मऊ उत्तर प्रदेश से राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि अनुराग दीप, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अतिबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस टी अंसारी, महताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मिराज अंसारी, करोला मुरादाबाद से मिराज अंसारी, वसीम अंसारी, डॉक्टर अख्तर हुसैन का भी पत्र हमें मिला, असालतपुरा मुरादाबाद से फरीद अंसारी, बिलाल अंसारी, जुबैर अंसारी, खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, नई सड़क वाराणसी से शाहिद सद्दू, मलका मुमताज, इंशा अली तारिक, कोदई चौकी देहलू गली वाराणसी से बेबी आलम, नफीस अहमद, अनवर भाई जरीवाला, कपड़ा मार्केट से गुड्डू, शमा, रुमा, इशरा, शालू, आमिर और सारिक, पीएम सिटी बनारस यूपी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहनी सिंह, मोहित सिंह, छोटी पेरी वाराणसी से काशी प्रसाद सिंह, मदन कुमारी, राधा रानी वर्मा, पुष्पा ताम्रकार, विजय लक्ष्मी, कुसुमलता सिंह, हर्षित पुलकित और इनकी दादी जी, मॉडल टाउन पानीपत से संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा आन्या अनाया, नेहा सागर, गुम्बर, हिमांशु गुगलानी, इम्मू कुरैशी, सुधीर और नूतन, और ये पत्र भेजा है शिवाजी चौक कटनी मध्य प्रदेश से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संजीव वर्मा, रज्जन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, प्रकाश सोनी यहीं से हैं, मनोज नामदेव, सुनील जैन, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, लालू सोना मोना, हनी यस सौम्या और इनके मम्मी पापा। आप सब सुनना चाहते हैं संगम फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है और इस गीत में बात पत्रों की हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कार्यक्रम भी पत्रों पर ही आधारित है और आप लोगों ने जो पत्र भेजा है उसको हम शामिल कर रहे हैं और पत्र का स्वरूप देखिए क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है।

तो ये जो प्रेम पत्र था और आपका जो पत्र आता है उसमें क्या फर्क होता है? बहुत नहीं, आपका भी प्रेम हमें मिलता है पत्रों के माध्यम से, है ना दोस्तों? और आप पत्र भेजते हैं, उसको हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपके पत्र आपके गीत। और पत्रों का ज़माना तो बहुत शानदार था, और अभी पत्रों का जो ज़माना है वो थोड़ा सा बदला है सोशल मीडिया के द्वारा। ईमेल आ गई, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, सोशल मीडिया के तमाम तंत्र आ चुके हैं, लेकिन पत्रों का अपना महत्व है। और जो प्रेम पत्र आप भेजते हैं उसको हम शामिल करते हैं आपके प्रेम के साथ। तो चलिए देखते हैं अगला पत्र हमें किसने भेजा है। यह है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बीबी आरजू जाजोरिया। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से यह खत हमें भेजा है एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुक निशा, शकील अहमद, डॉक्टर शहबाज खान, डॉक्टर

सलीम अहमद ने। दिल्ली से हैं आप, हैं पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ सिंह नेगी, गौरव सिंह नेगी, मिट्टी और कुहू। चितबड़ा गांव बलिया से जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, नेहा, निधि, आयुषी, अनुष्का। लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, ऋषु, इला और विनस। कनाट प्लेस नई दिल्ली से डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनुष्का और तन्मय गजभिये। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, मन्नू सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू। गांव फरांसी से राजकुमार डोडी, सरजीत सिंह डोडी। राजा बाजार बिहिया से सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतीक केशरी। थाना रोड बक्सर से ये पत्र हमें भेजा है ओमानंद केशरी, धनानंद केशरी, विनोद केशरी ने। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। हरिपुरा झज्जर से प्रदीप बधवा, आशा बधवा, गीतेश बधवा, मोक्ष बधवा, यश बधवा, निखिल बधवा। बड़ भुईली पोस्ट अदलहाट जिला मिर्जापुर से आरएसपी खन्ना, नसरुद्दीन अंसारी, गोफरान अंसारी, अकबर अंसारी, झाझू अंसारी, सिद्दीकी अंसारी, मंजूर कुरैशी। स्टेशन रोड बस्ती से जयप्रकाश भारती, नीलेश कुमार, कविता और स्वाति। अकोला से विजय वडालकर, लता वडालकर, वैष्णवी और आंजिक्य। कल्याण ईस्ट से विनय वडालकर, कल्पना वडालकर, ऋषिकेश और आदेश। जैसे को तैसा, जी हाँ, इस फिल्म का गीत आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

अब आप सुनेंगे धरती कहे पुकार के फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है मजरूह ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनने के ख्वाहिशमंद पटेल नगर मुगल सराय से आप हैं सुनील कुमार सिंह, नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, पिंटू दीवाना, सुरेंद्र कुमार सुमन, जगमोहन साहनी, शिवाजी चौक राजिम से श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, मेन रोड बनोसा दरियापुर जिला अमरावती से यश चौहान, अंश चौहान, संदीप चौहान, माधवी चौहान, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार, जतुका किशनपुर से यह खत हमें भेजा है आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज ने, करवाडी प्रतापपुर प्रयागराज से रामप्रकाश गौतम, मंजू गौतम, प्रेम चंद्रपाल, डीपी यादव, विजय कनौजिया और सौरभ वर्मा, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, मुबारकपुर रूची तक या आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना और हसीना दिलशाद, बाड़मेर राजस्थान इसरोल से शफी मोहम्मद सोलंकी, शाहरुख खान, मांगे खान, शहीद खान और ईदो कुमारी, ग्राम कुंडावल तारा पोस्ट लार रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, एंद्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति, माता जी इनकी निर्मला त्रिपाठी, कच्ची सराय दाल मंडी वाराणसी से मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सैफी, मोहम्मद हसन, तबस्सुमानो, नाजिया रहनुमा, चौराहट नई बस्ती पड़ाव से रोशन अली, सिराज आलम, मोहम्मद समद और रोजी अलीसा। ये पत्र भेजा है अहमदाबाद से भालचंद भटके, जतिन मेहता, विकास भटके, फुलवा मेहता, नीलेश भटके, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, दिया रीत, स्वीटी सागर, अंशु, रितिका, रिचा, चित्रंजन, उमेश, सरोज, रेखा, ऋषभ रजावत और उनकी दादी जी। तो सुनिए अपनी पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में धरती कहे पुकार के फिल्म का ये गीत।

तो भाई पत्रों के द्वारा तो संदेश भेजते थे, अब बादल से भी संदेश भेजा जा रहा है ना। तो कार्यक्रम में अब हम अगला पत्र शामिल करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये फरमाशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। इस कार्यक्रम में यदि आप भी शामिल होना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा, पोस्ट कार्ड खरीदिए, पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए हमारे पते की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा पता नोट कीजिए, हमारा पता है आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी, पिन कोड 221010। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी 221010। तो हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार। तो चलिए देखते हैं अगला खत किसका है। ये भेजने वाले श्रोता है बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी, रोशनी केसरी, रजानगर बजरडिया वाराणसी से मोहम्मद नसीम, मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद शमी, मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद अनीस अहमद अंसारी, मोहम्मद अली अहमद अंसारी, मोहम्मद रजा अहमद अंसारी, मोहम्मद शकील अहमद अंसारी, मोहम्मद सलाहुद्दीन अहमद अंसारी, बटाओ भी रामनगर वाराणसी से ये पत्र भेजा है नैतिक गुप्ता, गोलू गुप्ता, रोहन गुप्ता और इनके परिवार के सदस्यों ने। गांव कैरो पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, बेबी अहमद, पित्रा गुरु शब्द, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, जगदीप सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र।

बजाज करनाल से जग्गी दुआ, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारका और वंश बत्ता, गोलाघाट बक्सर से विजय केशरी, गौरी केशरी, गौरीशंकर केशरी, शंभू केशरी, नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, पंकज केशरी, रोहन केशरी, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, ग्राम सोंगा, मगरलोड, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से, दतरंगी से भागवत वर्मा, देवरी से के आर साहू, लेवई से गुलाबदास राजा दास, चितईपुर वाराणसी से पंकज, नीलू, निशा, फातिमा, अजहर, अयान, अमान और अनीस। तो आप सभी सुनना चाहते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में क्रिएचर 3D फिल्म का गीत, तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, सावन तो आ चुका है लेकिन थोड़ा सा अभी सूखा सूखा सावन लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि सावन बरसेगा और बरसेगा, क्योंकि अभी और ज़रूरत है ना। तो अब देखते हैं अगला पत्र किसने भेजा है। ये हैं अशोक, बिहार कॉलोनी पहाड़िया वाराणसी से। अनिल गुप्ता गोंड, रामा गुप्ता गोंड, अंकुश कुमार गुप्ता, पूजा गुप्ता गोंड, अविरल अग्रिम गोंड। पंचेरी जम्मू से राकेश गंगोत्रा और अनीता गंगोत्रा। लल्लापुरा वाराणसी से अलीसा आयान खान, अलीजा और ऐनुल खान। धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू खुशी, प्रवीण साहू, सी एल यादव। मसीता डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, श्रीमती बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा। यहीं से हैं बबीता बोत, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, एस आर कांगड़ा। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। परमवीर हाउस आदर्श नगर भटिंडा पंजाब से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत, विक्रमजीत ग्रोवर। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, रमन साहू, पवन वर्मा, मुशीर खां। यहीं से गीता नायक, अलका साहू, अंजलि वर्मा, शाहना सपनम। ग्राम बरठी पोस्ट सकलनिया चंदौली से इमृति यादव, गौ लक्ष्मी सासाराम गली नंबर 8B से कुमारी गंगा रति चौहान, राजेश कुमार अकीला, कुमारी गुड्डू चौहान, आर के सिंह चौहान। परवेज अहमद फागु सोनकर सुगुलपुरा वाराणसी से। दुर्गई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभणी से सी आर कुलकर्णी। आप सभी सुनना चाहते हैं पूर्णिमा की आवाज में मां फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत अन्नू मलिक का।

टिकरापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, श्रीमती सरोज ध्रुवंशी, संजय कुमार ध्रुवंशी, कुमारी किरण लता ध्रुवंशी, नजरबत्ती ध्रुवंशी, मास्टर शानू ध्रुवंशी। बठेना से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा। चटोदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। ग्राम बेलखेड़ा जबलपुर मध्य प्रदेश से गणेश विश्वकर्मा, गुड्डू इंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, सुलेखा विश्वकर्मा, रेखा संगीता, मोना सरोज, रिया अनिल, अमित प्राची, कार्तिक और परिवार के सभी सदस्य। सुआतला नरसिंहपुर से भाई ज्ञानेश विश्वकर्मा, गुड्डू विश्वकर्मा, वर्षा सुषमा, अशोक उमेश, राजकुमार विश्वकर्मा। सुंदरपुर वाराणसी से प्रीति सौरभ, कुमारी ऋतु सान्याल, रिया मिली मेघना और लक्की। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, रुचि विनीत आहूजा निमित और विशाल गगनेजा। आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर यलगार फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है सुदर्शन फाकिर ने, संगीत चन्नी सिंह का, आवाज उदित नारायण और सपना मुखर्जी की।

0: है मेरी हमरा, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

कार्यक्रम का आखिर गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने, तकिया मड़िया हो जौनपुर से, जमील अहमद शाह मोहम्मद, अल्तमा शाह मोहम्मद, दानिश शाह मोहम्मद, साजिद शाह, अंसार टोला मड़िया हो जौनपुर से, निगार बानो, रहनुमा बानो, राहत जहाँ, रोशन जहाँ, शाहिस्ता नाज, अस्तुपुरा मऊनाथ भंजन से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, अबू बकर अली अंसारी, सादिक साजिद और सारिक, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, इरम परवीन, अजीमाबाद मऊ से आमिर अखलाक, अवनीश कुमार मिश्रा, कुमारी रानी मिश्रा, वलीदपुर मड़हा से राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, सिराज अहमद फारूकी, पंचकुला सेक्टर 9 पंजाब से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, करणवाला सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, राधा मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाहड़कर, राही सरिता गवाहड़कर, सिद्धांत गवाहड़कर, बंटी, विश्वकर्मानगर नागपुर से शैलेन गवाहड़कर, वैशाली गवाहड़कर, कुमारी ध्वनि गवाहड़कर, परी प्रिंस, एकांश, ग्राम अलगी डांट पाली जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से चंद्रपाल मरावी, ओम प्रकाश मरावी, राम प्रकाश मरावी, तिव्रता डबरीपारा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जागेंद्र कुमार मरकाम, महसूल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, नवासी हुमैरा नाज, नवासी सुमैरा नाज, नुजा जहानाज, शाजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख, लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू। तो कार्यक्रम के अंत में सुनिए शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत संगीत एस डी बर्मन का, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म गाइड का ये खूबसूरत सा गीत।

इसी ख्वाहिश के साथ की होगी फिर मुलाकात, आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम समाप्त करने की। अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही विनम्र होकर झुक जाता है, और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही

0: मिलती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं, लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है,
0: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई
1: जी।
0: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिख रहा हो। बहुत अच्छी कहानी थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की। कोई नाराजगी है तो माफ करें।
1: तो राजेश जी आपको कहना चाहते हैं, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया
0: जी। हाँ। कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है।
0: अजीत जी, विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक, पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों।
1: जी,
0: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
0: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा,
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
0: ये नारा दिया था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। AI के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
1: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गाँव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
0: इसका उत्तर है, मावलीनोंग गांव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
1: तो श्रोताओ, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
1: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम,
1: वीर कुंवर सिंह।
0: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहाबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
2: हमका सिपाहियों के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जला डालो।
3: '1857 भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए

0: जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
1: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड?
0: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
2: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
3: सुना तुमने?
4: क्या?
3: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
4: हैं?
3: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
4: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
3: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
4: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
0: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
5: बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह। अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो, अब हमार कुंवर सिंह का करें?
6: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गईल बा, कभो कुछ हो सकेला। हाँ,
7: चाहिए कि जिसके बारे में
3: हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है, अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या आदेश है?
6: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
4: भैया सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है। अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
7: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
3: जी हुजूर,
7: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिले।
3: जी हुजूर।
7: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।

0: हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए, सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है। शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
1: कुंवर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हरकिशन सिंह जिंदाबाद, कुंवर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
2: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
3: साथियों, आप सबने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं हैं। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं। अब जंग शुरू होती है। कुंवर सिंह

0: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
1: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
2: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें।

0: खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं।
1: आमीन। खुदा आपकी मुराद पूरी करे।
0: हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
2: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।

ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: अतरौलिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया।
1: आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई। दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया।
2: देखो देखो, अरे घोड़े पर सवार होकर हमारे राजा कुंवर सिंह कैसे जा रहे हैं।
1: कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बांह में गोली लगी, जिसे बाएं हाथ की तलवार से काट कर उन्होंने गंगा में बहा दिया।
3: लो मां गंगे, आज तुझको ही देता हूं ये।
1: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में, दाया हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जानवी को मानो नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।

0: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
1: ओह माय गॉड, देखो शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
2: यस सर।
0: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोक गीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह, और आइए अब सुनते हैं ओज और वीर रस से परिपूर्ण सुंदर कविता वीर तुम बढ़े चलो।
1: हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों और युवाओं को साहस, संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हों।
0: जी,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर तुम बढ़े चलो। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, उसके पहले ये संदेश।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।
3: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं सुषमा गुप्ता। इनके सुर में पहले सुनिए रैदास की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थी सुषमा गुप्ता। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में सुनिए विदुषी शोभा गोटू का उपशास्त्रीय गायन राग मिश्र पहाड़ी में ये दात्रा। आपके साथ तबला पर संगति किया है अनिश प्रधान ने और हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालवालकर ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे विदुषी शोभा गुट्टू का उप शास्त्रीय गायन राग मिश्र पहाड़ी में ये दात्रा। आपके साथ तबले पर संगति की थी अनीस प्रधान ने, हारमोनियम पर थे पुरुषोत्तम वालवालकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजने को है, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता में एक रूपता तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता बढ़ाने, स्वतंत्रता पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे, लेकिन सदन में लगातार नारेबाजी के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च किया। सरकार का दावा है कि विद्यार्थियों की 98% मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी विधानसभा के पास पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और नई विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 विद्यार्थी अब भी अनिश्चितकालीन अनशन है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की।

0: है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी में वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 112 अंक बढ़कर 78,611 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कुछ खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार कंचन बिंद पत्नी रमाशंकर ये ग्राम रामनगर सीकरी थाना परणी मिर्जापुर की रहने वाली हैं, कहीं लापता हो गई हैं। कंचन बिंद की उम्र है 24 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फीट, रंग गोरा, मजबूत शरीर है। ये जब लापता हुई थी उसमें लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। कंचन बिंद के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। जहीं से और भी सूचना प्राप्त हुई है, रवि पुत्र राकेश निवासी ग्राम नदीहार थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर कहीं लापता हैं। रवि के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 20 वर्ष, लंबाई 5 फुट 6 इंच, रंग गेहुआ, मजबूत शरीर, चेहरा गोल है। ये जब लापता हुए थे उसमें काले रंग की शर्ट और काली पैंट पहने हुए थे। रवि के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने समीप के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। एक और भी सूचना यहीं से प्राप्त हुई है, ज्योति पति का नाम राजू पटेल, ये ग्राम कैमा रसूलपुर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर की निवासी हैं, कहीं लापता हो गई हैं। ज्योति के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 27 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। यह जब लापता हुई थी इसमें सफेद रंग का सूट पहने हुए थी। ज्योति के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने समीप के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा।

रात्रि 10 बजे। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात 8 बजे। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे विदुषी शोभा गुटू का उपशास्त्रीय गायन। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर। शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात। इसी कार्यक्रम में अंकित दुबे की वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका। साथ में आप सुनेंगे यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन 1:15 पर बहनें सुनेंगी गीत संगीत चर्चा के अलावा जूट उत्पादों का बढ़ता महत्व विषय पर दीपमाला की वार्ता। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप पर जो आधारित होगा फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। शाम 5 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। अलावा इसके शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर रसरंग में और रात 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम में। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स वेव्स OTT पर। अब से कुछ ही पलों बाद यानी ठीक 1:10 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, जिसे लखनऊ केंद्र से संप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो हर घर तिरंगा अभियान में जोश व खरोश से हिस्सा ले और एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में इज्तिमाई अज़्म की तजदीद करे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा हमारा फख्र है, कौम के लिए अपनी बेहतरीन पेशकश करने के लिए मुसलसल तहरीक का जरिया है। वजीर आजम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि इस साल की कोशिशें वंदे मातरम के लिए वक्फ है, खासतौर पर जब हम उसकी 150वीं सालगिरह मना रहे हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गोरखपुर के अहाते से आज तिरंगा यात्रा का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी तिरंगा यात्रा है। इस साल हमने उत्तर प्रदेश में 50 मिलियन घरों पर तिरंगा लहराने का हदफ मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर तिरंगा लेकर चलना चाहिए और तिरंगा नहीं फेंकना चाहिए। सोशल मीडिया पर तिरंगा को एहतराम के साथ पोस्ट करना चाहिए।
1: ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है, उस अमिट गाथा की प्रेरणा है। किसी युवा से अगर उसके आदर्श को छीन लो, इसका मतलब है युवा को हमने गौरव के क्षणों से वंचित किया है, एक अन्याय किया है युवा के साथ। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
0: वजीर आला ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा में भी हिस्सा लिया। इससे पहले वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हर घर में तिरंगा मुहिम का आगाज किया। वजीर आला की रिहायशगाह से विधान भवन तक तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों के साथ अवामी नुमाइंदों, नौजवानों, खवातीन, बीजेपी लीडरों और फनकारों ने शिरकत की। सावन के महीने के दूसरे पीर को रियासत भर के तमाम शिव मंदिरों में सुबह सवेरे से ही भगवान शिव को पानी चढ़ाने की रस्म शुरू हो गई। शिव मंदिरों में सुबह से ही शिव अकीदतमंदों का हुजूम है। अकीदतमंदों की सहूलत के लिए उत्तर प्रदेश इंतजामिया ने अकीदतमंदों और कावड़ियों के लिए वसी इंतजाम किए हैं। रियासत में कावड़ यात्रा अकीदा, टेक्नोलॉजी और जदीद सहूलियात का संगम बन गई है। कावड़

0: यात्रा ऐप एक क्लिक पर अकीदतमंदों को यात्रा से मुतालिक जरूरी मालूमात फराहम कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सावन के महीने के दूसरे पीर को रामनगरी अयोध्या हर हर महादेव और बम बम बोले के नारों से गूंज उठा। भगवान शिव के दर्शन करने और जल अभिषेक करने के लिए सुबह से ही हजारों अकीदतमंद मंदिरों में जमा हुए। अकीदतमंदों ने सबसे पहले मुकद्दस सरयू नदी में गुस्ल किया और फिर कदीम नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे, जिसे भगवान श्री राम के बेटे कुश ने कायम किया था, और भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया। भारी हुजूम के पेश नजर जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी और ट्रैफिक के वसी इंतजाम किए हैं। रियासत के वजीराला योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि रियासती हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। अपने सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर-ए-आला ने लिखा कि हिंदुस्तानी रवायात में कुछ यात्रा महज मजहबी रसूमात नहीं है, बल्कि वो मुआशरे, सकाफत, नज़्म व ज़ब्त और जिंदगी के जिंदा मकतब भी बन जाते हैं। रियासती हुकूमत ने 12 साल तक की उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक नई पहल की है। उन बच्चों को लेकर जाने वाली हर स्कूल की गाड़ी के लिए एक अटेंडेंट होना जरूरी होगा, जो बच्चों को महफूज तरीके से सवार करने और उतारने का जिम्मेदार होगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशुतोष निरंजन ने इस मामले को लेकर रियासत के तमाम स्कूलों के मुंतजमीन को एक खत जारी किया है। खत में स्कूल की गाड़ियों की हिफाजत और हिफाजत को मजीद मुस्तहकम बनाने की हिदायत भी दी गई है। शेरों के आलमी दिन के मौके वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने जंगली हयात से मोहब्बत करने वालों और रियासत के लोगों को अपनी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत माहौलियाती तहफ्फुज़ और माहौलियाती तवाज़ुन के लिए पुरअज़्म है। अपने सोशल मीडिया पैगाम में उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो आलमी यौम शेर के मौके पर फितरत के इस मुहाफिज की हिफाजत का अहद करें, ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज और खुशहाल सैयारे को यकीनी बनाया जा सके। महकमे मौसमियात ने अगले दो दिनों तक रियासत के कई हिस्सों में तेज बारिश की वार्निंग जारी की है। दरियस्ता पहाड़ी इलाकों में बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत के कई नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है। बाराबंकी में दरियाए घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बदायूं फरकाबाद में दरियाए गंगा खतरे के निशान के करीब बह रही है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। उसके पहले ये संदेश।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
6: 0542227658।
4: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ 0542227658।

0: सखियों के साथ,
1: सखियों की बात,
0: सखियों के जज्बात,
2: गृह लक्ष्मी।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता सखियों को सुरेखा का प्यार भरा नमस्कार।

0: नमस्कार, और सोनी तुम्हें भी हमारा नमस्कार।
1: सभी सखियों को सोनी का प्यार भरा नमस्कार, और सुरेखा जी आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार सोनी। और देखो, अभी क्या है, सावन चल रहा है, और सावन
1: हाँ
0: तो बहुत ही मनभावन होता है, सबका
1: बिल्कुल
0: मनभावन होता है, और सब तरफ जो है कई प्रकार के धार्मिक आयोजन चल रहे हैं।
1: व्रत
0: कहीं
1: व्रत
0: कोई
1: उपवास चल रहे हैं।
0: व्रत है,
1: हाँ
0: उपवास है, कोई रुद्राभिषेक करा रहा है, तो
1: जी
0: कोई जल चढ़ाने के लिए चला जा रहा है, तो कई तरह के आपको घर में भी और बाहर आप सड़क पे
1: हर
0: निकलेंगे एक
1: तरफ,
0: दिन,
1: मतलब बहुत ही अच्छा माहौल
0: बस
1: है,
0: वही है।
1: खुशहाली का।
0: और लेकिन अपनी ये जो जिंदगी है
1: जी
0: और हमारे जो ये धार्मिक आयोजन है, बाकी और जो घर भी है, सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एक चीज़ का होना बहुत अनिवार्य है, एक देवी का प्रसन्न होना बहुत अनिवार्य है,
1: हाँ, लक्ष्मी
0: लक्ष्मी जी का।
1: देवी।
0: तो वो भी बहुत अनिवार्य है कि आपकी रोजी रोटी चलती रहे, आप
1: जी
0: जो चाहें, जिस प्रकार का भी, जिस प्रकार से घर चलाना चाहें, जिस प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करना चाहें, वो कर पाएं, उसके लिए पैसा
1: धन
0: भी
1: की बहुत
0: होना
1: जरूरत होती
0: जरूरत होती
1: है।
0: है, और उसके लिए आवश्यकता है अपने आप को उस लायक बनाने, यानी कि कुछ ना कुछ काम करके आर्थिक आजादी
1: मजबूत
0: चाहिए
1: होना।
0: सबको,
1: जी
0: आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, तो
1: जी
0: उसके लिए बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब करके
0: बिल्कुल सही
1: अपना
0: बात है,
1: आत्मनिर्भर
0: बिल्कुल
1: बन
0: सही
1: सकते
0: बात
1: हैं
0: है,
1: ना।
0: आत्मनिर्भर
1: जी
0: बन सकते हैं, क्योंकि देखो, लघु उद्योग लगाने के लिए कोई ये आवश्यक नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होना अनिवार्य है,
1: जी
0: और बहुत ज़्यादा पैसा लगाना भी ज़रूरी नहीं है।
1: जी हाँ
0: आप बहुत छोटे से में अपने घर पर रह के छोटा काम करके अच्छी एक आमदनी, जिसे कहते हैं ना, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और सुरेखा जी, आज हमारी बहनें केवल रसोई तक सीमित नहीं है, जैसा कि हमने बताया कि लघु उद्योग कुटीर उद्योग में वह उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना रही है, और भारत देश में ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक की अर्थव्यवस्था को गति देने में महिला उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था देखिए, भारत जैसे विकास देश की रीढ़ की हड्डी के समान है, और ये लघु उद्योग है, और ये न लोगों को स्वावलंबी बनाते हैं बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। और आज की आधुनिक युग में लघु उद्योग पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर नई तकनीकों और इनोवेटिव आइडियाज के साथ तरक्की की नई राह दिखा रहे हैं।
0: और ये जो लघु उद्योग होते हैं ना,
1: जी
0: वो बहनें अपने घर से भी कर सकती हैं, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि बहुत कम समय, कम पैसे से भी, कोई
1: जी कम
0: आवश्यक नहीं
1: बजट
0: है
1: में।
0: कि
1: हाँ
0: बहुत ही ज़्यादा उसके लिए आप बजट लगाइए, बहुत ज़्यादा पैसे से कोई काम शुरू करिए, घर रह के आपके हाथ में भी जो हुनर है उससे भी काम किया जा सकता है, जैसे अचार है, पापड़ है, बड़ी है, इन सब का भी काम कर सकती हैं बहनें, अगर उन्हें ये सब कुछ अच्छा बनाना आता है, तो
1: जी
0: ये सब भी काम किया जा सकता है, और उसे बाजार में बेचा भी जा सकता
1: हाँ।
0: है ना।
1: और सुरेखा जी, इसके साथ साथ ही टेक्सटाइल और हस्तशिल्प की बात करें तो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जूट बैग, बुटीक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सभी लघु उद्योग करके महिलाएं अपना वर्चस्व भी बना रही हैं। और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जैसे मिट्टी के बर्तन, दिए, दोना पत्तल, ये सभी लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और हम ये सब करके महिलाएं हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दे रही हैं।
0: और लघु उद्योग लगाने के बहुत फायदे होते हैं, वो फायदा ये होता है ना, जैसे कि आपके साथ साथ आपके आसपास में जो चार पांच लोग रह रहे हैं
1: जी
0: ना, आप उन्हें भी रोजगार दे पाते हैं, और इसके साथ ही साथ जो पलायन वाली स्थिति है कि
1: हाँ
0: लोगों को
1: जी
0: लगता है कि किसी बड़े शहर में जाके ज्यादा
1: हाँ हमें
0: कमाएं,
1: रोजगार मिलेगा।
0: हाँ रोजगार मिलेगा, तो इसे आपको आपके साथ साथ दो चार लोग और भी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, तो इस तरीके के छोटे छोटे कार्य जो है वो करते रहने चाहिए।
1: जी और इसमें सरकार भी बहुत प्रोत्साहन प्रदान कर रही है लोगों को। कई ऐसी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिससे महिलाएं लघु उद्योग स्थापित करने में सक्षम हो रही हैं। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, अन्नपूर्णा योजना, महिला समृद्धि योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं जिसका लाभ उठाकर हम लघु उद्योग स्थापित करके विकास के नए आयाम को छू सकते हैं।
0: बिल्कुल सही है, लेकिन भाई अब आर्थिक रूप से तो स्वावलंबन सभी को चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ साथ थोड़ा कुछ गीत संगीत भी होते रहना
1: हाँ,
0: चाहिए, है
1: मनोरंजन भी होना
0: ना।
1: चाहिए।
0: मनोरंजन भी अनिवार्य है, तो चलिए सखियों आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: सोनी देखो, घटा के साथ साथ हम भी आगे बढ़े।
1: हाँ बिल्कुल
0: अभी हम बातचीत कर रहे थे लघु उद्योगों की,
1: जी
0: तो एक ऐसा और भी उत्पाद है जिसे कह सकते हैं किसी एक मटेरियल से बना हुआ उत्पाद, अगर बहने करना चाहें तो उससे भी आगे बढ़ा जा सकता है, एक लघु उद्योग स्थापित किया जा सकता है, उसका नाम है जूट, है
1: जी
0: ना। अगर जूट से बने हुए उत्पादों का प्रयोग किया जाए

0: तो ये भी एक छोटा सा लघु उद्योग हो सकता है। तो और क्या किया जा सकता है जूट से, इसी संबंध में हम आज अपनी बहनों को एक बातचीत सुनवाने जा रहे हैं।
1: जी, और बातचीत का विषय है जूट उत्पादों का बढ़ता महत्व। दीपमाला राय से कंचन तिवारी जी की बातचीत।
2: सखियों, हम सभी अक्सर अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में जूट के उत्पादों का प्रयोग तो करते हैं, पर कभी सोचा है कि इन उत्पादों को कैसे बनाया जाता होगा? कैसे ये इतने सुंदर दिखते हैं? भाई, कई सारे जूट उत्पाद जो बैग होते हैं, जो बॉटल के कवर होते हैं, उन पर सुंदर सुंदर आकृतियां भी बनी होती हैं, वो रंग बिरंगे भी होते हैं। तो इसी विषय में हम आज जानेंगे दीपमाला जी से। जी हाँ, हमारे स्टूडियो में आज हैं दीपमाला राय जी। स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में।
3: नमस्कार मैम।
2: सखियों, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कई महिलाएं वर्तमान में इनसे जुड़कर स्वावलंबी बनी हैं और कई सारी महिलाएं हैंडीक्राफ्ट की चीजों को सीख भी रही हैं और इससे जुड़कर अपने घर को भी चला रही हैं। दीपमाला जी, आपने कई महिलाओं को जोड़ा है अपने कार्य से, तो आपको इसका विचार कहाँ से आया?
3: मैम, शुरुआत तो ऐसे हुई कि जब मैंने पहले अपनी खुद नौकरी छोड़ी तो ये था सबसे बड़ा चैलेंज कि अब क्या करना है। शुरुआत तो यहीं से हुई क्योंकि मैंने कई बार शादी के बाद, बच्चों के बाद नौकरी पकड़ी, छोड़ी, पकड़ी, छोड़ी, इवन गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ी। तो उसका एक कहीं ना कहीं सेटबैक था दिमाग में। फिर ये था कि कुछ तो करना है, बिना काम के तो रह नहीं सकती। तो ये समझ में आया कि मुझे अपना एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें मैं अपने जैसे और महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं जो मैं फेस कर रही हूं, बाकी लोग ना फेस करें। तो शुरुआत तो इस आइडिया के साथ हुई थी। फिर हमने अपनी सोसाइटी की रजिस्टर कराई, एक डिप्लोमा प्रोग्राम भी किया यहाँ पे मैंने बनारस में। ये सब शादी के बाद किया
2: अच्छा।
3: और उस कंडीशन में करते करते फिर एक आइडिया मिलने लगा, फैकल्टी मेंबर्स से मिले कि कहाँ से शुरुआत करनी, कैसे। कुछ स्टार्टिंग में थर्ड पार्टी प्रोग्राम्स किए, गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होकर प्रोग्राम किए, उसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स मुझे ज्यादा मिले जो मेनली फोकस थे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के। तो वहां से शुरुआत हुई थी और जब उन लोगों के साथ काम करने लगी, उन लोगों को सिखाने लगी, अलग अलग ट्रेनर्स के साथ जुड़े हम डिफरेंट डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट को लेकर के, तो ये समझ में आया कि सिर्फ ट्रेनिंग तक हमें सीमित नहीं रहना है, इसको आगे भी लेके जाना है। तो ये हमारा सौभाग्य था कि हमको कई सारे मतलब सरकारी प्रोग्राम मिले जिसमें महिलाओं ने फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कुछ दिए पैसे सीख लिया। तो सीखना ही पर्याप्त नहीं था, उसको आगे लेके जाना था। तो ये मुझे समझ में आया कि इसको आगे लेके जाना है तो उनको रोजगार चाहिए, काम चाहिए। तो वहां से शुरुआत हुई, महिलाओं को एक से दो, दो से दो, दो से चार और चार से छह हमने करना शुरू किया,
2: मतलब बढ़ते गया।
3: बढ़ते गया।
2: तो आप कहीं ना कहीं, आपके मन में ये पहले से ही रहा होगा कि मुझे इस क्षेत्र में रुचि है तो मैं इस क्षेत्र में ही आगे बढ़ूं।
3: रुचि थी सिर्फ देखने तक, क्योंकि करना मुश्किल काम था, शुरुआत कहाँ से हो। लेकिन कई बार एक होता है, हमने पहले भी सुना है ना, कि जो जरूरत होती है वो आविष्कार की जननी होती है। तो जरूरत थी नहीं तो सोचा नहीं करने के लिए। जब जरूरत हावी हुई, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कह सकती हूँ थोड़ी वर्कहोलिक काइंड ऑफ हूँ, कि आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना ये अपने आप में समझ लीजिए एक आशीर्वाद है।
2: आज के समय की
3: आज
2: मांग
3: के
2: भी है।
3: हमेशा से रही है, लेकिन पहले उस तरह से नहीं सोचते थे हम लोग। अभी मुझे लगता है ये थोड़ी ज्यादा जरूरी हो गया है, ऐसे ही
2: तो
3: बस।
2: सिर्फ मतलब क्यों आपने जूट उत्पादन को ही चुना एक इस तरह का?
3: ये सबसे इजी था स्टार्टिंग में हमारे लिए और एक तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली भी था। तो हमको ये लगा कि जो महिलाएं आसानी से कर सकें घर से ऑपरेट, क्योंकि हमने सिलाई कढ़ाई का प्रोग्राम उनको सिखाया था, ट्रेनिंग दी थी, बैग्स बनाने का ट्रेनिंग उनको मिला था। तो उस कंडीशन में, और फिर हमने सरकार से जुड़ के उनको विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत उनको कई सारी महिलाओं को मशीन भी मिल गई थी।
2: अच्छा।
3: तो ये उनके लिए इजी था कि वो घर से ऑपरेट कर सके काम। उनको बस शुरुआत करनी थी कि हमारे पास रॉ मटेरियल मंगाने का हमारे लिए एक थोड़ा सा चैलेंज था। उसके बाद तो जब वो भी सॉर्ट आउट हुआ तो फिर वो इजी रह गया हमारे लिए। बहुत मुश्किल और महिलाओं के लिए भी था कि उनको बाहर नहीं निकलना था, क्योंकि सबके साथ में एक चैलेंज होता है कि भाई बच्चा भी देखना है, परिवार भी देखना है। तो वो सारी चीजें जब एक साथ आपको इजीली मिल जाए तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट हमारे लिए
2: तो
3: शुरुआत
2: जो
3: थी।
2: रॉ मटेरियल्स की बात आपने की,
3: जी,
2: ये रॉ मटेरियल्स आप कहाँ से मंगाते हैं? लोकल
3: ये
2: मार्केट से या बाहर से कहीं से?
3: तो शुरुआत जब ट्रेनिंग हम लोग दिलवा रहे थे महिलाओं को, तो हमने रॉ मटेरियल बनारस से ही लिया था,
2: अच्छा।
3: लोकल मार्केट से, जो राजा बाजार और ये सब जगह है, तो वहां से शुरुआत की थी हमने। लेकिन वो बहुत महंगा पड़ रहा था हमें, तो ट्रेनिंग तक तो ठीक था क्योंकि थोड़ा काम था, सीखने वाली बात थी।

0: हमें ये लगा कि जब इसको जब प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट हमारे अच्छे बनने लगे, लोगों ने हमने अलग अलग लोगों को गिफ्ट किया और फीडबैक भी मांगा कि कैसा बन रहा है, तो जब लोगों ने फीडबैक दिया कि नहीं अच्छा है, थोड़ी और कोशिश भी की जा सकती है, तो फिर हम बाहर से मंगाने लगे। वेस्ट बंगाल से आता है जूट, वहीं का प्रोडक्ट है ये, रादर जूट के रेशे जो है वहां के GI प्रोडक्ट भी हैं, तो हमने वहां से जूट मंगाना शुरू किया। उसके बाद चेन वगैरह सब दिल्ली से आती है, जो उसमें जितने भी अमेंडमेंट्स अलग अलग
1: लगाए
0: रहते
1: जाते हैं।
0: हैं वो सब दिल्ली से मंगवाते हैं, वहां से इजी पड़ता है हमें।
1: तो जैसा आपने बताया कि आप महिलाएं जो हैं इसमें जो जुड़ी हैं वो घर से भी काम करती हैं,
0: जी, अधिकतर
1: तो
0: घर से ही
1: और
0: करती हूँ।
1: मशीन भी उनको मिली, तो क्या रॉ मटेरियल उनको आप अब उनके घर पे देते हैं कि आप वो अपने घर से प्रोडक्ट को तैयार करके लाके आप तक पहुंचाएं, या वो आके आपके पास काम करती हैं?
0: दोनों ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि हमें अभी समय काम करते करते हो गया है कि कितने मीटर में कितना बैग बनेगा, क्या साइज है, कैसा है। तो और एक ट्रस्ट वाला भी बात है, वो लोग बहुत आराम से बना भी लेती हैं, उनके पास सामान छोड़ दो तो।
1: जैसे कि आपने बताया कि वो लेके जाती हैं, वहां बना के आपको पहुंचाती हैं, तो इसको बनाने में भी तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। किन तरह की चुनौतियां आती हैं आपके सामने?
0: अब नहीं आता, पहले
1: अच्छा,
0: थोड़ा आता था, अब तो वो लोग काफी ट्रेंड हो गई हैं करने में। रदर हमने इसको कंटिन्यू करते, जूट में लोगों ने बहुत डिमांड भी करने शुरू की, तो जूट के साथ हमने थोड़े मिक्स एंड मैच भी करने शुरू किए। बनारसी ब्रोकेट जो एक अलग GI है उसको भी मैच कराना शुरू किया,
1: अच्छा,
0: बनारसी बैग्स भी बनाने। तो अब कोई दिक्कत नहीं होती, पहले थोड़ी सी होती थी क्योंकि कई बार साइज का प्रॉब्लम होता था, कई बार हैंडल वगैरह अच्छे से नहीं लगा, चेन नहीं लगा, इस तरह से छोटी छोटी चीजें होती थी। लेकिन अब क्योंकि काफी समय हो गया करते हुए ये, तो अब ऐसा इशू नहीं आता है।
1: तो इसके साथ साथ आप ट्रेनिंग भी देती हैं, मतलब नए लोगों को सिखाने का भी कार्य करती हैं?
0: जी, अभी भी हमारे सितंबर में एक ट्रेनिंग शुरू होगी बैग मेकिंग की, यहीं बनारस में, तो वो भी सितंबर में स्टार्ट होगी। 30-30 के बैच हम लोग बना के प्रोग्राम करते
1: अच्छा।
0: हैं, वो भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग है, MSME के द्वारा दी जा रही है हमें,
1: तो
0: तो
1: सर्टिफिकेट वगैरह भी देते होंगे?
0: सर्टिफिकेट मिलता है, और उसी की बेसिस पे फिर उन लोग वो लोग जो भी अलग टूल किट जो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए बेसिस पे वो अप्लाई कर पाते हैं वो लोग।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि लोग आपसे जुड़ करके सीख भी रहे हैं और आपके साथ कार्य कर पाए तो कर पाए, नहीं तो वो अलग भी अपनी चीजों
0: करते
1: को,
0: हैं वो
1: हाँ,
0: लोग
1: कर
0: अलग भी,
1: लेते
0: हमने
1: हैं।
0: उनको इस तरफ फ्री छोड़ा हुआ है कि अगर आपको कहीं से भी रोजगार मिलता है, मान लीजिए हमारे पास ऑर्डर कम है, तो ये तो गलत होगा कि हम कहीं किसी और के लिए काम मत करो, आप कहीं से भी काम करो, हमारी कोशिश है कि आप रोजगार में रहो।
1: दीपाला जी, जो भी महिलाएं आपसे जुड़कर कार्य कर रही हैं,
0: जी
1: उन्हें आप कुछ ना कुछ पेमेंट वगैरह भी कर रही होंगी,
0: जी
1: तो क्या वो पेमेंट उनकी सेविंग हो, मतलब एक तरह से सुरक्षित रहे, उनके आने वाले समय में उनको काम दे, ऐसा भी कुछ है सेविंग अकाउंट वगैरह इस तरह
0: जी
1: का?
0: जब हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में रहते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको अलग अलग जगह, अगर उनका बैंक अकाउंट नहीं है तो खुलवा दें, और उनके नियर बाय बैंक्स के बारे में पूछते हैं कि कौन सा बैंक है आपका। उसमें रादर कई सारे प्रोग्राम्स में अगर हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री की तरफ से वो एज ए कारीगर भी अगर रजिस्टर होते हैं, तो उसमें तो इंश्योरेंस की भी उनको सुविधा मिलती है, तो वो लोग अकाउंट खुलवाते हैं। प्लस कोशिश रहती है मेरी कि इतना तो अवेयर करूं कि नेट बैंकिंग के लिए भी हमने कई बार कई महिलाओं के फोन में ऐप भी डाउनलोड करके दिया कि ऐसे सीखो ऐसे करो, ताकि वो कुछ भी एक एक्स अमाउंट अपने लिए बचा सके और अपने बच्चों की भी आगे जरूरत जो है उसको पूरी कर सके।
1: जैसे कि आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि आप बनारसी ब्रोकेट को भी जोड़ रहे हैं ताकि उसके डिजाइन को और अच्छा बनाया जा सके और लोगों की पसंद भी बढ़े, तो आने वाले समय में आपको ऐसा लगता है कि लोकल मार्केट में, या हम यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसकी मांग
0: जी
1: बढ़ने वाली है?
0: मांग ऑलरेडी बढ़ रही है मैडम, बहुत ज्यादा मांग बढ़ी है, और हमारे पास अभी कोशिश है कि हम इसको और एक नेक्स्ट लेवल पे फिनिश प्रोडक्ट बनाएं, क्योंकि अभी हमारे पास जो मशीनें हैं थोड़ी छोटी हैं, तो जितनी अच्छी मशीन होगी उतना अच्छा काम निकल के आएगा। तो हमारी कोशिश भी है कि उसको हम एक्सपोर्ट मार्केट तक भी लेके जाएं।
1: तो जूट का उत्पादन यदि हम देखें तो पर्यावरण की दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है।
0: बिल्कुल मैडम, प्लास्टिक की जगह पे अगर आप जूट इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की दृष्टि से तो ये बहुत ही अच्छा है, जो रिसाइकल प्लास्टिक जो हो नहीं पाता है। आप बैग इस्तेमाल करेंगी तो पहले तो हर जगह जो पन्नियां देखने की हमें आदत हो गई थी उससे मुक्ति मिलेगी। दूसरी अगर बात करूं तो आजकल हम फैशन पे बात करें, हम महिलाएं हैं तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग फॉलो करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत ट्रेंडी है टोट बैग्स, बैग जूट के, और वो कलरफुल बैग सुंदर भी लगते हैं, दूसरा दिखने में भी अच्छा लगता है वो कलरफुल बैग्स को। उसके बाद अगर आप बात करें तो बजट फ्रेंडली भी है, 100, 150, 200 तक में बहुत अलग अलग तरह के अलग अलग वेरायटी के बैग्स आ जाते हैं।

0: तो वो हर तरह हर लिहाज से एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और आपको बजट फ्रेंडली भी है, दोनों ही बातें हो जाती हैं।
1: यानी कि आप एक बार अगर 100-200 रुपए खर्च करते हैं तो आप बहुत सारी पन्नियों को इकट्ठा करने से बच जाएंगे,
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: बिल्कुल
1: तो
0: जी।
1: ये बजट फ्रेंडली भी है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। चलते चलते हमारी सखियों को बताएं कि भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं।
0: भविष्य के लिए पहला टारगेट तो है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स पे भी काम कर सकूं मैं। और जहां तक जूट की बात है या बैग्स की बात है जो हम बना रहे हैं अभी, हमने से कैनवास पे भी काम करना शुरू कर दिया है। इसको हमें उस लेवल तक फिनिश प्रोडक्ट बनाना है कि हम एक्सपोर्ट में जा सकें, क्योंकि वहां पे थोड़ा लेवल अलग चाहिए होता है। तो वो कोशिश है हमारी कि वो प्रोडक्ट हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम अपनी महिलाओं का एक दमखम दिखा सके कि वो कितना अच्छा काम कर रही हैं।
1: यानी
0: और
1: महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की पूरी
0: जी
1: कोशिश है इसमें।
0: पूरी कोशिश है। हाँ
1: तो आप ये मानती है ना कि महिलाओं का स्वावलंबी होना बहुत जरूरी है आज
0: जी
1: के
0: बहुत
1: टाइम
0: जरूरी
1: में?
0: है, जरूरी नहीं है तो कंपलसरी है। मतलब मुझे लगता है कि छोटा काम करो, बड़ा काम करो, स्किल बेस्ड काम करो, ये जो भी काम करो, काम जरूरी है करना। आपको आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना जरूरी है।
1: दीपमाला जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारी सखियों को जूट के उत्पादों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उन्हें बताया कि वोकल फॉर लोकल यानी कि स्वदेशीय उत्पादों के विषय में जानना और उसका इस्तेमाल करना कितना अच्छा होता है हर दृष्टि से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद आप सभी को।
2: सखियां अभी सुन रही थी बातचीत। बातचीत का विषय था जूट उत्पादों का बढ़ता महत्व। दीपमाला राय से बात कर रही थी कंचन तिवारी।
3: और सुरेखा जी, देखिए हमारी सखियां जो हैं घर में घर संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं, तो ऐसे में वो अपने अपने आप का जो ध्यान रखना भूल जाती हैं, है ना। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, दूसरों की ही सेवा में लगी रहती हैं। और खुद को स्वस्थ रखने के लिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो सुबह के टाइम थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल कर थोड़ा सा व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है ना
2: ये बात तो बिल्कुल सही है,
3: जी।
2: पर मुझे ना हंसी इस बात पे आ रही थी सोनी कि तुम भी थोड़ा अपना ख्याल रखा करो। पीछे पता है मुझे पता चला तुम्हारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा सा टिप्स मैं दे दूं,
3: हाँ बिल्कुल
2: है ना।
3: दीजिए
2: सखियों ये सही बात है कि हम सभी सारा दिन सभी की तीमारदारी में एक तरीके से कह दें
3: हाँ
2: लगे
3: लगे
2: रहते
3: रहते
2: हैं,
3: हैं
2: लेकिन अपने ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दे पाते। ये बहुत ही आवश्यक है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और ध्यान कैसे देना है, बस ज्यादा नहीं, आधा घंटा थोड़ा सा व्यायाम करिए। हम क्यों किसी बीमारी का इंतजार करें कि जब हमें कोई बीमारी लग जाए तभी हम व्यायाम करें? व्यायाम में ना ही पैसा लगना है, ना ही किसी डॉक्टर के पास जाना है, ना ही कुछ आपको कुछ अलग से करना है, सिर्फ
3: लेकिन सुरेखा जी, सखियां हमारी सोचती है ना कि अब हम इस उम्र में क्या ही
2: हाँ।
3: व्यायाम करें।
2: लेकिन लेकिन सखियों आपको बताएं कि आप सिर्फ छोटे से शुरू करिए, 10 मिनट से शुरू करके
3: जी
2: इसे 30 मिनट तक लेकर जाइए और एक समय बांधिए कि सुबह का समय है ये हम अपने सेहत के लिए देंगे। मैंने ये महसूस किया है, शायद मेरी सखियां भी इस बात को बहुत अच्छे से महसूस करती होंगी कि अगर बहनें यानी हम महिलाएं अगर घर में बीमार हो जाए ना, तो मुझे
3: सारा
2: लगता
3: काम
2: है
3: रुक जाता
2: सारा
3: है।
2: काम रुक जाता है। और या फिर ऐसा लगता है कि बहुत बीमार है तो भी काम तो करना ही है,
3: हाँ ये तो
2: काम तो
3: है
2: रुकता
3: जी,
2: नहीं है ना, कि बुखार है लेकिन थोड़ा सा दवा ले लिया फिर चलो खाना बनाओ,
3: हाँ
2: फिर
3: जी
2: थोड़ा सा उतरता है, लगता है हमारा ही मन नहीं मानता। तो बहुत आवश्यक है सखियों कि अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि हमें ही घर को चलाना है और हमें ही अगर आर्थिक रूप से भी स्वावलंबी होना है तो ये अपने आप को स्वस्थ
3: अपने शरीर को
2: रखना
3: फिटनेस तो रखना
2: बहुत आवश्यक है।
3: पड़ेगा।
2: और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि रोज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, यानी 15 से 20 मिनट व्यायाम करें।
3: जी
2: और व्यायाम करने का भी एक और तरीका मैं बताऊं, बस
3: हाँ
2: कुछ नहीं, एक प्यारा सा गीत लगा लीजिए और देखिए 10 मिनट कैसे बीत जाएंगे।
3: जी

0: ज्यादा है।
1: सोनी देखो समय कितनी जल्दी बीत गया,
2: हाँ, गाना सुनते
1: गीत भी पूरा नहीं हो पाया। खैर ठीक है सखियो, अब समय से तो आना जाना हमारी ये कह लें कि आवश्यकता भी और मजबूरी भी है।
2: जी।
1: तो अब हम अपनी सखियों को इजाजत, अपनी सखियों से लेंगे इजाजत, नमस्कार करें।
2: हाँ, नमस्कार,
1: नमस्कार।
3: सखियों के साथ,
4: सखियों के बाद,
3: सखियों के जज्बात,
4: गृह लक्ष्मी।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। दिन के 1:45 हुए हैं और इस वक्त आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं राम नारायण मौर्य और उनके साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए ये बनारसी कजरी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं राम नारायण मौर और उनके साथी। कार्यक्रम के अंत में इनके स्वर में सुनिए ये कजरी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे राम नारायण मौर्य और उनके साथी। श्रोता हम आपको याद दिला दें, इनका गाया लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं।

मीडियम वेव 241.564 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स। वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 2 बजने को हैं, कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। श्रोताओं कीजिए कुछ पलों का इंतजार और सुनिए समाचार।

0: The intermittent rain has been continuing across most parts of the state this morning. More than 100 roads have been disrupted in several parts of the state due to landslides triggered by heavy rainfall. A report.
1: The monsoon has once again become active in Himachal Pradesh, with intermittent light rain being reported from several areas, including the state capital Shimla. According to the Meteorological Center Shimla, an orange alert for heavy rainfall has been issued for four districts of the state today: Kangra, Sirmaur, Mandi and Kullu. In view of the weather warning, people have been advised to exercise caution and stay away from rivers and streams. Meanwhile, landslides caused by heavy rainfall have disrupted traffic on more than 100 roads across the state. As many as 255 electricity transformers and around 20 drinking water supply schemes have also been affected. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: In Odisha, MD has forecast formation of a fresh low-pressure area over the northwest Bay of Bengal around the 13th of this month. A cyclonic circulation is likely to form around tomorrow, bringing another spell of rainfall to the state. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appeals to opposition to allow Home Minister Amit Shah to make his statement and respond to issues raised by members without any disruption. Four bills, including Tribunals Reforms Bill 2026, introduced in Lok Sabha. Bill aims to improve transparency and efficiency in functioning of tribunals. Protesting students begin their march towards Jharkhand Assembly over alleged irregularities in recruitment examinations. Har Ghar Tiranga movement gains momentum as Tiranga rallies organized across the nation. Over 10 lakh people evacuated as Typhoon Dolphin batters parts of eastern China. World Lion Day being celebrated today. Prime Minister Narendra Modi says India scripted successful conservation journey from 523 lions to 891 in last 10 years. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। तीन अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
3: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
2: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
4: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
2: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार

0: विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
1: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। यही मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करो। सरकार को क्या आपत्ति है?
0: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
2: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना।
0: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। नविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप

0: में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।

0: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज ये कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आपको व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए हमारे नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा नंबर नोट कीजिए 7905519981 यानी कि 7905519981। इस नंबर पर आप हमें संदेश भेजेंगे, लेकिन गुजारिश आपसे ये करना है कि जो श्रोता एक बार संदेश भेज दें अगला संदेश अगले कार्यक्रम में भेजेंगे। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। तो कार्यक्रम में जो पहला गीत होगा उसे हमने लिया है फिल्म सजाई दा मांग हमार से। और हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर संदेश आने शुरू हो गए। ये संदेश भेजा है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आत्मा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, महताब अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी। सजाई दा मांग हमार फिल्म के लिए ये संदेश भेजा है। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से आप हैं विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से SP जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आस्तु जायसवाल, अभिनव जायसवाल। नगर पंचायत दिनारा से जयराम खरवार। संदेशों की झड़ी सी लगी है और संदेश लगातार आते जा रहे हैं। ये संदेश भेजा है गिर्रा पलाड़ी छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार साहू, सोनू, आशीष और कपिल साहू ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आप हैं TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा। ग्राम पंचायत भटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, सुरेश राजेश्वरी वर्मा। डांडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामो।

तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और पोता उनका मास्टर अलकबीर। पुराना तालाब डुमराव से ये संदेश भेजा है वलीउल्लाह अंसारी, आसमान आज अंसारी और शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एस टी अंसारी और फातमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, डांडी लोहारा छत्तीसगढ़ से प्रभा रानी चमोरिया, गमनिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहो जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल, पटेल नगर मुगलसराय से शशि सिंह, आस्था सिंह और आकाश सिंह का भी संदेश मिला। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, दीनानाथ सिंह और कयूम सा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, गाजीपुर गांव नारीपच देवरा डी बाबा चौराहे से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा और सचिन, कुंडलवाली महाराष्ट्र से गंगाधर सावंतकर, विजय लक्ष्मी सावंतकर, राजेश राकेश रिश्ता, ग्राम चकपुटनी असनाव बाजार जिला भदोई से गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार यादव, गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी लेवई छत्तीसगढ़ से, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य और पंकज प्रमोद, राजा बाजार भी आरा से सुरेश केशरी, पूनम केशरी और प्रतिज्ञा केशरी। संदेशों की झड़ी सी लगी है, सावन की झड़ी के साथ साथ आपके संदेशों की भी झड़ी चल रही है। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाह, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातमा, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राय, शमशुल कुमार राय, बेगम रुखसार, रकीबा साहिन, तुबा आफरीन, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से आशु राजभर, अक्षय राजभर, यहीं से हैं अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकाश राजभर, मौनी बाबाधाम चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से रामसकल चौधरी, अमितेश कुमार तिवारी ने करनी बलिया से संदेश भेजा है, ग्राम पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, सुमंत कुमार प्रजापति हथौज बलिया उत्तर प्रदेश से, विशाल मिश्रा वैभव बाजार माधोपुर इमिलिया जौनपुर से, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डीके साहू रसेड़ा छत्तीसगढ़ से, रायगढ़ बिहार से उमाराज, शफी उमा, याकूब उमा, अजमल उमा और कलीम उमार, जेलोड खंडवा से दुर्गा कुमारी, सपना और राकेश ताई, छठिया पोखरा दुमराव से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती और स्टार मोहम्मद समी, चंद्रनगर सहारनपुर से महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव और नरेंद्र यादव। तो आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर सजाई द मांग हमार फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है के साही ने, संगीत नदीम श्रवण का, आवाज आशा भोसले और प्रीति सागर की। इस गीत के बाद आप सुनेंगे बिहारी बाबू फिल्म का गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे बिहारी बाबू फिल्म से, और इस गीत के संदेश भेजा है मल्हैया टोला रामनगर वाराणसी से कंचन निषाद, गोपाल निषाद, अश्वनी निषाद, आकाश और संध्या। ये हैं शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल, पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल, पिंकी जायसवाल, ग्राम बोहरा पोस्ट दिलदारनगर जिला गाजीपुर से अकलू राम, केदार राम और दीनानाथ सिंह, जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से आप हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, कुटवा कपिलधारा सरायमोहना वाराणसी से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या एंद्री सारंग ओमनाथ शिवांग अदिति और इनकी माताजी निर्मला त्रिपाठी, कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, शाहिद हसन आजमी, सलीम जावेद, निकल परवीन, नुसरत परवीन, शमीम अख्तर अंसारी, नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, घमहापुर गंगापुर वाराणसी से शंकर प्रसाद, आदर्श कुमार, स्नेहा कुमारी, जागृति, श्वेता कुमारी और रुद्र कुमार। संदेश रिपीट न करें। जालंधर से मीना कौर, तुलसी कौर और संदीप कौर, जियोलोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और कुमकुम मिश्रा, अपरकोट से साजिद खान।

थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष आयुषी और सानवी गुप्ता। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन, उनके माताजी, राजमुनिया गांव नारीपच देवरा गाजीपुर से। ग्राम बागी पोस्ट नंदगंज जिला गाजीपुर से अच्छेलाल बिंद। नगर पंचायत दिनारा से सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे। मन की लोरमी छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे, समीर खांडे। खंडवा से कुमारी दुर्गा तमोरिया, गौरव तामोरिया और डोंडी लोहारा से कुमारी प्रभा वेलदार। आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर बिहारी बाबू फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है ब्रिज किशोर दुबे ने, संगीत चित्रगुप्त का, आवाज अलका याग्निक और सुरेश वाटकर की। इसके बाद आप सुनेंगे चुटकी भर सेनूर फिल्म का गीत। इसी गीत के लिए संदेश भेजा है लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, ऋषु, इला और वीनस ने।

फरमाशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे चुटकी भर सेनूर फिल्म से, और इसके लिए

देश भेजा है पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह, गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, तपोवन रामनगर वाराणसी से आशा गुप्ता, परमेंद्र मिश्रा, सीटू और उनके परिवार के सभी सदस्य और पीहू भी हैं इसमें। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, प्रमिला और अनुश्री सैनी, महादेवपारा से मीरा सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़े, स्टेशन रोड जमानिया से एसपी जायसवाल, डिंपल।

से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली शर्मा और अनामिका शर्मा। शिव मंदिर दालमंडी से राजू बनारसी और राजेश कुमार यादव। कोरिया से डोनट पाबो, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गोरैया जालंधर से अशोक जाटो। कार्यक्रम के अंत में आप सुनेंगे भैया दूज फिल्म का गीत, और इसी गीत के लिए चितबड़ागांव बलिया से संदेश भेजा है जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, नेहा, निधि, आयुषी और अनुष्का ने। तो सुनिए अपनी पसंद पर चुटकी भर सेनूर फिल्म का गीत, उदित नारायण और उषा मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना मजरू की, संगीत चित्रगुप्त का।

स्वर्णकार पटेल नगर मुगलसराय से ये हैं सुनील कुमार सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो ये श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा या कैसा लग रहा है, इसमें और क्या सुधार की गुंजाइश है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा पता नोट कीजिए, pkld@varanasi.gmail.com। तो हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है ताकि हम और भी उसको बेहतर कर सकें इस कार्यक्रम को। भोलानाथ यादव ने चंदौली से हमें संदेश प्रेषित किया है और ये संदेश भेजा है, मुबारकपुर ऊंची तक के आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वक्कार हैदर, कनी सकीना और हसीना दिलशाद ने। और भी संदेशों को हम सर्च कर रहे हैं क्योंकि ये कार्यक्रम का आखिरी गीत होने जा रहा है। शुरू में श्रोताओं के भीड़ सी आ गई थी, मतलब बाढ़ सी आ गई थी, लेकिन अब थोड़ी सी गति धीमी हुई है, हमें संदेश सर्च करने का मौका मिल जा रहा है। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद ने भी संदेश हमें भेजा है। दिलदानगर गांव से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, केदार राम और कयूम शाह। भास्कर दुबे का संदेश रिपीट हो रहा है। तो आप सभी सुनिए कार्यक्रम के अंत में भैया दूज फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज में, गीतकार लक्ष्मण साहबादी, संगीत चित्रगुप्त का।

तो कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भैया दूज फिल्म से, और इस गीत के लिए संदेश भेजा है सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीस राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकाश राजभर ने। बिहारी कॉलोनी लोनी से वली भाई बेलदार, आसमा फुलवारी, विशाल मिश्रा बंधुआ बाजार माधोपुर इमलिया जौनपुर से आपने संदेश भेजा है। तकिया मणियाओं से जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमस शाह, मोहम्मद दानिश शाह, मोहम्मद हसरत शाह, मोहम्मद साजिद शाह। हिसार से गुंजन और प्रशांत किशोर का भी संदेश मिला है, और कुछ श्रोता लगातार संदेश रिपीट कर रहे हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें अधिक से अधिक हमारे नए श्रोता भी शामिल हो सकें। भास्कर दुबे ने चोचकपुर गाजीपुर से संदेश भेजा है, लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू।

और अब फरमाइश गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 3 बजे हैं, संपन्न हो रही आज की हमारी पहली सभा। शाम 5 बजे दूसरी सभा आरंभ होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 243.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है आज की दूसरी सभा।

अलका याग्निक और उदित नारायण की युगल आवाज में सुनिए ताल फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अभी आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की युगल आवाजों में ताल फिल्म का ये गीत। और अब आइए सुनते हैं एक बार फिर, उदित नारायण की आवाज है, साथ में लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

गुरु फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: श्रोताओं, दिन भर की भाग दौड़ के बाद अगर शाम के कुछ पल सुकून के मिल जाए और साथ में हो युववाणी, तो क्या ही बात है।
1: बिल्कुल, और यही कोशिश रहती है हमारी भी कि जब आप हमारे साथ हों तो हर बातचीत आपको कुछ नया सोचने, कुछ नया सीखने और मुस्कुराने का एक कारण दे जाए।
0: तो आइए इस खूबसूरत शाम की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे विषय के साथ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है।
1: शाम का वक्त है दिन भर के अनुभवों को समेटने का, कुछ नया जानने का और कुछ अच्छे विचारों के साथ खुद को फिर से तरोताजा करने का।
0: और अगर इस सफर में आपका साथ दे आपकी अपनी आकाशवाणी, तो यकीन मानिए ये शाम और भी यादगार हो जाती है। और इस शाम को यादगार बनाने आए हैं हम सौरव
1: और मैं दिव्या, तो स्वीकार कीजिए हमारा सब प्रेम।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो साथियों, अगले कुछ पल हमारे साथ रहिए क्योंकि आज की बातचीत सिर्फ जानकारी नहीं प्रेरणा भी लेकर आई है।
1: क्योंकि आज की बातचीत सिर्फ जानकारी नहीं प्रेरणा के भी लेकर आइए। कहते हैं कुछ बातें शब्दों से समझ आती है और कुछ धुनों से के सहारे दिल में उतर जाती है। बस इन्हीं भावों को अपने साथ बनाइए, बनाए रखिए इस मौसमी धुन के साथ।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
7: 0542227658।
5: ओ
4: 0542227658।
5: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
8: दोस्तों कहते हैं अगर किसी के हाथ में किताब दे दी जाए तो शायद उसे हथियार उठाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन क्या सिर्फ पढ़ लिख लेना ही शिक्षा है, या शिक्षा सचमुच इंसान को सशक्त बनाती है? आइए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब तलाशते हैं।
9: अक्सर कहा जाता है कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या वाकई शिक्षा किसी व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल सकती है? दोस्तों शिक्षा सिर्फ डिग्री या नौकरी पाने का साधन नहीं होता है, बल्कि ये सोचने समझने की क्षमता, सही गलत का विवेक और आत्मविश्वास देती है। यही गुण व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं।
8: यानी शिक्षा हमें केवल अक्षर ज्ञान नहीं देती, बल्कि अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक बनाती है।
9: बिल्कुल, जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो अपने स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीक, कानून और समाज से जुड़े निर्णय अधिक समझदारी से ले पाता है। यही असली सशक्तिकरण है।
8: बिल्कुल, और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि यदि एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसका जीवन बदलता है, लेकिन यदि एक परिवार शिक्षित होता है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है।
9: बिल्कुल सही कहा सौरभ तुमने, खासकर बेटियों की शिक्षा का प्रभाव कई पीढ़ियों तक दिखाई देता है।
8: बिल्कुल,
9: शिक्षित महिला न केवल अपने सपनों को पूरा करती है बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
8: आज डिजिटल युग में शिक्षा का स्वरूप भी बदल रहा है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, डिजिटल लाइब्रेरी और नई तकनीकों ने सीखने के अवसर पहले से कहीं ज्यादा अधिक आसान बना दिए हैं।
9: हाँ, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि हर व्यक्ति

0: तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और डिजिटल संसाधनों की समान पहुंच हो, तभी शिक्षा का वास्तविक लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच पाएगा।
1: तो क्या हम यह कह सकते हैं कि सशक्त समाज की नींव किसी इमारत से नहीं बल्कि एक अच्छे विद्यालय, एक प्रेरणादायक शिक्षक और सीखने की इच्छा से रखी जा सकती है?
0: बिल्कुल, शिक्षा वो दीपक है जो अज्ञान का अंधकार दूर कर अवसरों की नई राह दिखाती है। ये व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाती है।
1: तो श्रोताओं, याद रखिए, धन खो जाए तो वापस पाया जा सकता है, लेकिन शिक्षा मिलने वाला ज्ञान जीवन भर आपका साथ देता है।
0: तो आइए हम सभी ये संकल्प लें कि स्वयं सीखेंगे, दूसरों को सीखने के लिए प्रेरित करेंगे और शिक्षा के प्रकाश को हर घर पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएंगे।
1: क्योंकि सच ही कहा गया है, शिक्षा ही सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी मार्ग है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, तो शिक्षा इंसान को केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि ऐसी व्यक्तित्व भी गढ़ती है जो समाज और देश की दिशा बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण भी मिलते हैं जिन्होंने शिक्षा, संघर्ष और जनसेवा के बल पर अपनी अलग पहचान बनाई।
0: जी हाँ, ऐसे ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे वराहगिरी वेंकट गिरी, जिन्हें हम वीवी गिरी के नाम से जानते हैं। आज उनकी जयंती के अवसर पर आइए उनके जीवन और योगदान को याद करते हैं।
1: दिव्या, सबसे पहले यह तो बताओ कि वीवी गिरी के बारे में जानना क्यों जरूरी है?
0: क्योंकि वो केवल भारत के चौथे राष्ट्रपति ही नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर श्रमिक नेता और समाज सेवी भी थे।
1: अच्छा,
0: उनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी था और उनका जन्म 10 अगस्त 1894 को बहरामपुर वर्तमान ओडिशा में हुआ था।
1: यानी राष्ट्रपति बनने से पहले वे लंबे समय तक समाज और देश के लिए काम करते रहे।
0: बिल्कुल, उन्होंने आयरलैंड में कानून की पढ़ाई की, वहीं से उन्हें स्वतंत्रता और श्रमिक अधिकारों के विचारों से प्रेरणा मिली। भारत लौटने के बाद वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और विशेष रूप से मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इसी कारण उन्हें भारतीय श्रमिक आंदोलन के प्रमुख नेताओं में भी गिना जाता है।
1: राष्ट्रपति बनने तक उनका सफर भी काफी प्रेरणादायक रहा।
0: जी हाँ, वो उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल रहे, फिर उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद वर्ष 1959 में वे भारत के चौथे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 1974 तक इस पद पर रहे।
1: माफ कीजिएगा दोस्तों, ये 1969 है। 1969 में वे भारत के चौथे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 1974 तक इस पद पर रहे। और दिव्या, उनके योगदान का सम्मान भी देश ने सर्वोच्च स्तर पर किया, है ना?
0: बिल्कुल, वर्ष 1975 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा, ईमानदारी और समाज के प्रति समर्पण किसी भी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।
1: सचमुच, वीवी गिरी का जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि नेतृत्व केवल किसी पद का नाम नहीं बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की जिम्मेदारी भी है।
0: और उनकी जयंती पर यही सबसे बड़ी सीख है दोस्तों, कि ज्ञान, कर्म और सेवा, और इन तीनों का संगम ही सच्चे सशक्त भारत की नींव रखता है।
1: बिल्कुल, ज्ञान की रोशनी और कर्म की सच्ची लगन, यही किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। ऐसे ही सकारात्मक विचारों को दिल में संजोए रखिए, क्योंकि कुछ एहसास शब्दों से नहीं, सुरों से भी खूबसूरती से व्यक्त होते हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का अगला पड़ाव एक ऐसी प्रस्तुति है जहाँ विचारों की गंभीरता और अनुभवों की समृद्धि का सुंदर संगम देखने को मिलेगा। हमारे विश्वास की आने वाली यह वार्ता आपको एक दृष्टिकोण से सोचने और समझने का अवसर प्रदान करेगी। तो आइए सुनते हैं विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका इस विषय पर विशेष वार्ता। वार्ताकार हैं अंकित दुबे।
1: नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकित दुबे है और आज मैं विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर अपने विचार आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूं। द बिगेस्ट एसेट इन एन इकोनॉमी इज नॉट द मशीन्स, इज नॉट द फाइनेंस, इट इज द यूथ, इट इज द मैन पावर। मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 12 अगस्त को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं की समस्याओं को पहचानना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना होता है। जब हम भारत के संदर्भ में इस दिवस की बात करते हैं तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अब हम समझते हैं युवा शक्ति का अर्थ और इसमें भारत का स्वरूप। युवा अवस्था मानव जीवन का एक स्वर्णिम काल है, जब व्यक्ति के भीतर

अंदर असीम ऊर्जा, कुछ नया करने का जज्बा और दुनिया को बदल देने का उत्साह होता है तो वही युवावस्था कहलाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मुझे 100 ऊर्जावान युवा दे दो, मैं भारत को बदल दूंगा। यह वाक्य इस बात का प्रमाण है कि युवा शक्ति किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। आज भारत सामाजिक आर्थिक आयाम की दृष्टि से एक अत्यंत भाग्यशाली दौर से गुजर रहा है। हमारे देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक असीम ऊर्जा का भंडार है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो भारत को फिर से विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत का नव निर्माण केवल ईंट और पत्थर की इमारतों से नहीं होगा, बल्कि यह युवाओं के विचारों, उनके नवाचार यानी इन्वेंशन और इनोवेशंस और उनके पसीनों से होगा। भारत के निर्माण में युवाओं की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत बनाने तक में क्या भूमिका है, इसको समझते हैं। भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने को पलटना होगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नायकों ने अपनी युवावस्था में ही देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनके अदम्य साहस और देशभक्ति ने ही स्वतंत्र भारत की नींव रखी। आजादी के बाद देश को एक नई दिशा देने में भी युवाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई। हरित क्रांति हो या श्वेत क्रांति, विज्ञान का क्षेत्र हो या रक्षा का, हर जगह युवा शक्ति ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। आज का युवा उस स्थान पर खड़ा है जहां उसे एक आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की इमारत खड़ी करनी है। आइए अब समझते हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के क्या योगदान है। भारत के नवनिर्माण में आज का युवा बहुआयामी भूमिका निभा रहा है। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स की बात करें तो आज का भारतीय युवा अब केवल नौकरी मांगने वाला जॉब सीकर नहीं रह गया है, वह नौकरी देने वाला जॉब क्रिएटर बन गया है। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोनॉमी है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से निकलने वाले युवा अपनी नई सोच के साथ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसे अभियानों को असल गति युवाओं ने ही दी है। अगर बात साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की करें तो चाहे चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता हो या मंगलयान मिशन हो या इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सफलता हो, इन सबके पीछे युवा वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत छिपी है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय युवाओं ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। सिलिकॉन वैली से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, इन सबका नेतृत्व भारत के युवा ही कर रहे हैं। बात अगर सामाजिक परिवर्तन की करें तो भारत का युवा आज के समय में एजेंट ऑफ सोशल चेंज बन चुका है। समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने का साहस युवाओं में ही होता है और आज का युवा जातिवाद, सांप्रदायिकता और लैंगिक भेदभाव जैसी पुरानी बेड़ियों को तोड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, स्वच्छता अभियान और रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वे सवाल पूछते हैं, रूढ़ियों को तोड़ते हैं और एक समतामूलक समाज के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। अगर बात हम खेलकूद और फिटनेस की करें तो आज का युवा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि वह खेल के मैदान में भी भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स से लेकर एशियन गेम तक नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जैसे युवा एथलीटों ने देश को गौरवान्वित किया है। इनकी सफलताओं ने देश में फिट इंडिया को एक जन आंदोलन बना दिया है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में युवा खेलों को एक करियर के रूप में अपनाया जाने लगा है। अगर मैं बात करूं आधुनिक कृषि और कृषि तकनीकों की तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज के शिक्षित युवा कृषि को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। खेती अब केवल पारंपरिक नहीं रह गई है, युवा ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट फार्मिंग तकनीकों का उपयोग करके अपने कृषि उत्पादन को निरंतर बढ़ा रहे हैं। हजारों युवा एग्रीटेक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं जो किसानों को मौसम की जानकारी देने से लेकर उनकी फसल का सही दाम दिलवाने तक काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं रक्षा और साइबर सिक्योरिटी की तो देश की सीमाओं की सुरक्षा हमेशा से
हमारे युवा सैनिकों के हाथों में होती है। लेकिन अब युद्ध के तरीके बदल गए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होकर युवा देश की रक्षा तो कर ही रहे हैं, साथ ही अब वे डिजिटल मोर्चे पर भी तैनात हैं। देश के महत्वपूर्ण डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैकर्स से बचाने के लिए युवा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ यानी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में दिन रात देश की सेवा में

कार्यरत हैं। अगर मैं बात करूं कला, संस्कृति और डिजिटल क्रिएशन की, तो युवाओं ने यहां भी अपना अहम योगदान प्रदान किया है। युवाओं ने भारत की सॉफ्टवेयर पावर को दुनिया में स्थापित किया है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अनेक शहरों में युवा अपनी कला, संस्कृति, नृत्य और स्थानीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित कर रहे हैं। आज के युवा केवल कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं, केवल इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं, वो सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता भी फैलाते हैं और जागरूकता फैला करके समाज में एक क्रांति भी लाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं राजनीति और नीति निर्माण यानी पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकिंग की, तो युवा अब केवल चुनाव में वोट देने तक सीमित नहीं है, वे सिस्टम का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। आज के युवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाकर अधिकारी प्रशासन में नई तकनीक, सोच और पारदर्शिता ला रहे हैं। ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक युवा नेता और थिंक टैंक्स में काम करने वाले युवा शोधकर्ता देश के भविष्य की नीतियां तय करने में अहम योगदान भी दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा की यानी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड ग्रीन एनर्जी की, तो आज की युवा पीढ़ी जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के प्रति पिछली पीढ़ियों से कहीं ज्यादा जागरूक हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में युवाओं द्वारा कई नए स्टार्टअप्स चलाए जा रहे हैं। नदियों की सफाई, पौधारोपण और प्लास्टिक मुक्त भारत के अभियानों में युवाओं का नेतृत्व भी बहुत सराहनीय है। तो मित्रों, अभी तक हमने समझा कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के क्या योगदान रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि आज के युवाओं के समक्ष क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं। भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका असीम है, लेकिन उनके रास्ते में कई चुनौतियां भी हैं जिनका समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। सबसे बड़ी चुनौती है अनएम्प्लॉयमेंट की और स्किल गैप की यानी बेरोजगारी और कुशलता की कमी। डिग्रियां होने के बावजूद कई युवाओं के पास वह व्यवहारिक कौशल यानी प्रैक्टिकल स्किल नहीं है जिसकी आज के उद्योगों को आवश्यकता है, और इसी के कारणवश आज के कई युवा डिग्रियां तो ले लेते हैं, पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन वो नौकरी से वंचित रहते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूं युवाओं के समक्ष है, वो है मानसिक स्वास्थ्य की चुनौती यानी मेंटल हेल्थ की चुनौती। आज की गला काट प्रतियोगिता यानी कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन, सोशल मीडिया का दबाव और करियर की चिंता युवाओं में अवसाद और तनाव को पैदा कर रही है। अब ये बात सोचने जैसी है कि अगर आज का युवा ही अवसाद, तनाव, स्ट्रेस में जिएगा तो वो अपने भविष्य को कैसे सुधारेगा, और अगर युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो देश का भविष्य भी अंधकार से भरा होगा। जो तीसरी सबसे बड़ी चैलेंज मैं मानता हूं वो है नशाखोरी यानी सब्सटेंस अब्यूज की। भ्रमित होकर कुछ युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं जो न केवल उनका जीवन नष्ट कर रहा है बल्कि देश की प्रगति में भी बाधक बन रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है युवाओं के सामने, वो है ब्रेन ड्रेन की यानी बुद्धि पलायन की। प्रतिभाओं का विदेश पलायन आज भी एक बड़ी समस्या है। हमें अपने देश में ऐसे अवसर पैदा करने होंगे जिससे हमारे मेधावी युवा देश के विकास में अपना योगदान दें। मित्रों, होता यह है कि भारत में कुछ युवा पढ़ते तो हैं, लेकिन चूंकि भारत में उनको अच्छी सैलरी, अच्छी पैकेज और अच्छी नौकरी नहीं मिलती, तो वो अपने नॉलेज का प्रयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग विदेशों में जाकर करते हैं, जिससे भारत की तरक्की रुक जाती है। इसके साथ साथ एक और चैलेंज है आज के युवाओं के समक्ष, वो है डिजिटल एडिक्शन एंड वर्चुअल इल्यूजन की। आज का युवा स्मार्टफोन, आईफोन, सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स आदि में इस कदर उलझ गया है कि उसकी एकाग्रता क्षमता यानी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गई है। इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई और उनकी रचनात्मकता पर पड़ रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट और फिल्टर वाली जिंदगी देखकर कई युवा अपनी वास्तविक जिंदगी से निराश हो जाते हैं और हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। यानी आज के युवा सोशल मीडिया में दूसरों की जिंदगी को देख करके खुद को इन्फीरियर मानने लगते हैं, जिससे वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ युवाओं के समक्ष एक और बहुत बड़ी चुनौती है, जो है शिक्षा में असमानता और भाषा की बाधा, जिसे अंग्रेजी में कहें तो एजुकेशनल इनइक्वालिटीज एंड लैंग्वेज बैरियर्स। आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में एक बहुत बड़ी खाई है। संसाधनों के अभाव में गांव के मेधावी युवा भी अक्सर बड़े मंचों तक नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा अपनी मातृभाषा में बेहद प्रतिभावान होने के बावजूद केवल अंग्रेजी न बोल पाने के कारण कई युवाओं को करियर बनाने में संघर्ष करना पड़ता है। आज के युवा को एक और समस्या का सामना करना पड़ता है, जो कि है रोजगार की असुरक्षा। आजकल बहुत से युवा डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर या फ्रीलांसर, जिसे हम गिग

0: वर्कर या गिग इकोनॉमी भी कहते हैं के रूप में कार्य कर रहे हैं। यद्यपि इसमें तुरंत पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन इसमें जॉब सिक्योरिटी, स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड जैसी सुविधाएं नहीं मिलती, जो उनके दीर्घकालिक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा आज के युवाओं को सही मार्गदर्शन और मेंटरशिप का भी अभाव झेलना पड़ता है। युवाओं के पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही समय पर सही रास्ता दिखाने वाले मेंटर्स की कमी है। करियर काउंसलिंग के अभाव में आज भी युवा केवल भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे युवा डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन उन डिग्रियों से उन्हें कुछ खास प्राप्त नहीं होता और वो एक अच्छी नौकरी को तलाश कर पाने में असफलता प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ भारत के युवाओं के समक्ष वित्तीय साक्षरता की कमी भी है, यानी कि लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी के सामना भी भारत के युवा करते हैं। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए सरकार, समाज और स्वयं युवाओं को साथ मिलकर काम करना होगा। आइए हम समझते हैं कि युवाओं के सही मार्गदर्शन में सरकार और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए। सबसे पहले नई शिक्षा नीति का, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सही इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ताकि आज का युवा रटने के बजाय कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे सके। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लिया जाए और इसके लिए पर्याप्त परामर्श केंद्र खोले जाएं। खेलकूद, कला और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में युवाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सके। स्कूल व विश्वविद्यालयों में छात्रों को मेडिटेशन यानी ध्यान और योग को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, न कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में, जिससे बच्चों के मन, आत्मा और शरीर का संपूर्ण विकास हो और बच्चे देश के भविष्य में अपना सर्वोच्च योगदान दे सकें। मेरे युवा साथियों, अधिकार की मांग करना हमारा हक है, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाना सबसे बड़ी भूल है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखना है। हमें अपने डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाना होगा। स्वामी विवेकानंद जी का वह संदेश हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आइए हम इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपनी शिक्षा, अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का 100% उपयोग इस महान देश भारत के नव निर्माण में लगाएंगे। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, तकनीकी रूप से उन्नत हो और सामाजिक रूप से समरस हो। तो युवाओं, आपको बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
1: तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत लाभान्वित की गई होगी और अंकित दुबे, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल दिव्या, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर एक बार फिर हर घर तिरंगा की गूंज सुनाई देगी, लेकिन क्या तुम जानती हो इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी?
1: बिल्कुल, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों को तिरंगे से जोड़ना और राष्ट्र के प्रति सम्मान और एकता की भावना को मजबूत करना है।
2: यानी तिरंगा सिर्फ हमारी पहचान नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और देश की एकता का प्रतीक भी है।
1: तो इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए अपने घर पर तिरंगा फहराएं, उसका सम्मान करें और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी याद रखें दोस्तों।
2: क्योंकि जब हर घर तिरंगा लहराएगा
1: तो हर दिल में देशभक्ति की भावना और मजबूत होगी। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा।
2: बिल्कुल दोस्तों, अब वक्त है उस पड़ाव का जिसका इंतजार हमारे कई श्रोता बड़े बेसब्री से करते हैं। जी हाँ, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की, जहाँ सिर्फ सवाल का जवाब देना ही मकसद नहीं होता, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखना और अपने ज्ञान को एक नई दिशा देना भी होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ता है जब जिज्ञासा बनी रहे, और हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे उसी जिज्ञासा को हर दिन एक नया सवाल देकर और भी रोचक बना देता है।
2: बिल्कुल, लेकिन आज के सवाल की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कल के प्रश्न पर। तो कल का हमारा आपसे सवाल ये था कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, और
1: इसका सही उत्तर है डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन।
2: इस प्रश्न का सही जवाब देकर हमारे जो विजेता बने हैं उनके नाम हैं चंदा चंदौली से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, अंकेश कुमार सिंह,

नकहरा चुनाव चुनार मिर्जापुर से, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु, गोलू कुसुमबाई और दिव्यांश नागनपुरे, रिंग रोड नर्मदा नगर से, सूरज वर्मा।

0: नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। ग्राम खैगांव, तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा। आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। आपकी जागरूकता और सीखने का उत्साह यूं ही बना रहे।
1: तो अब आपकी बारी है, तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज का सवाल भी आपके ज्ञान की एक नई परीक्षा लेने वाला है। और अगर आपने हमारा अब तक का कार्यक्रम ध्यान से सुना होगा तो आपको इस सवाल का जवाब भी जरूर मिल जाएगा।
0: बिल्कुल, तो ध्यान से सुनिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि है, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? सवाल एक बार फिर से, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कब हुआ था?
1: तो अगर आपको इसका उत्तर पता है तो बिना देर किए हमें अपना जवाब भेजिए। आप हमें अपना उत्तर भेज सकते हैं हमारी इंस्टा आईडी youth_AIR वाराणसी, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youth_AIR_VNS@gmail.com।
0: जी हाँ, क्या पता अगली बार जब हम विजेताओं के नाम लें तो उसमें आपका नाम भी शामिल हो। इसलिए सोचिए, जवाब दीजिए और बन जाइए हमारे अगले क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर।
1: और अब इस उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा को यूं ही बनाए रखते हैं, क्योंकि कुछ एहसास शब्दों से आगे बढ़कर शुरू में भी अपनी पहचान बना लेते हैं।

0: को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना या फिर समझाना। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि शिक्षक ने विद्यार्थियों के सामने पर्यावरण संरक्षण के महत्व का सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि लेखक ने अपने पुस्तक में शिक्षा के महत्व का प्रभावी प्रतिपादन किया है।
1: और आज का इंग्लिश वर्ड है जेडेड, जिसकी स्पेलिंग होती है JADED। जेडेड का मतलब होता है थका हुआ, उबा हुआ, निरुत्साहित या फिर उत्साहहीन। जेडेड मीन्स फीलिंग टायर्ड, बोर्ड और लैकिंग एंथुसियाज्म, स्पेशली बिकॉज ऑफ डूइंग और एक्सपीरियंसिंग समथिंग टू मच। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर मेनी आवर्स, शी फेल्ट जेडेड एंड नीडेड सम रेस्ट। और वी कैन से इट एज, आफ्टर ट्रेवलिंग टू मेनी क्राउडेड टूरिस्ट प्लेसेस, शी फेल्ट जेडेड एंड वॉन्टेड टू स्पेंड सम क्वाइट टाइम एट होम।
0: तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इतिहास के पन्ने को भी पलट लेते हैं कि आज के दिन क्या खास हुआ था। तो दोस्तों, आज के दिन सन 1793 में पेरिस का समृद्ध लुब्रे संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया था।
1: और साथ ही 1942 में आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश भर में स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष और उग्र विस्तार हुआ था।
0: जी हाँ श्रोताओं, इसी के साथ सन 1990 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैगलन शुक्र ग्रह की कक्षा में पहुंचा था।
1: तो दोस्तों, अब बारी है आज के रोजगार सूचना की, जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS की तरफ से आई है, जिसने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर क्लर्क CSA की 16वीं भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आवेदन फॉर्म 1 अगस्त से ही शुरू हो गए हैं और आप 21 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, इसकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष है और अधिकतम आयु 28 वर्ष। विशेष जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर विजिट कर सकते हैं। दिव्या, अगर रास्ते में चलते हुए तुम्हें पैसे से भरा एक बटुआ मिल जाए और आसपास कोई ना हो तो क्या करोगी?
1: सवाल आसान लगता है सौरभ, लेकिन जवाब इंसान के चरित्र की असली पहचान बन जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ईमानदार व्यक्ति के पास भले ही सब कुछ ना हो, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी पूंजी होती है, लोगों का विश्वास। और विश्वास ही हर रिश्ते, हर संस्था और हर समाज की सबसे मजबूत नींव है।
0: तो आइए आज हम यह संकल्प लें कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
1: क्योंकि धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन विश्वास खो जाए तो उसे वापस पाने में पूरी उम्र लग जाती है। इसीलिए सच ही कहा गया है, ईमानदारी ही जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
0: बिल्कुल दोस्तों, क्या कहते हैं, दिव्या की ये बातें तो सवाने सही हैं। अब देखिए ना, अनमोल पूंजी तो हमारा बेशकीमती समय भी है जो हमारा प्रस्थान का इशारा कर रही है। तो दोस्तों, कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही।
1: अब अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सुनते रहिए युवाणी। कार्यक्रम में आज आपके साथ ही मैं दिव्या
0: और मैं सौरभ, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: तो दोस्तों, अब समय है हमारे कार्यक्रम के उस खास हिस्से का जहां हम अपनी भाषा की डायरी में कुछ नए शब्द जोड़ते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हर नया शब्द हमारी भाषा को थोड़ा और समृद्ध बनाता है और हमारी बातचीत को भी बेहतर बनाता है।
0: बिल्कुल, तो चलिए आपको बताते हैं आज के नए शब्दों के बारे में। और आज का हिंदी शब्द है प्रतिपादन, जिसका अर्थ होता है किसी विचार, सिद्धांत या फिर बात

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ हिस्सा लेले आ विकसित भारत के निर्माण में योगदान देले के अपने सामूहिक संकल्प के नवीकृत कैले का आग्रह कैले हमें। श्री मोदी सोशल मीडिया पोस्ट में कहने कि तिरंगा हमनी को गौरव हवे आ राष्ट्र खातिर अपन सर्वश्रेष्ठ देले का प्रेरणा स्रोत हो।
2: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
3: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास

0: करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत गोरखपुर में निकाल गयी तिरंगा जत्रा में शामिल भेल हैं। मुख्यमंत्री की अगुवाई में नगर निगम परिसर से रेलवे स्टेशन चौक ले निकाल गयी करीब 2.5 किलोमीटर के जत्रा में ढेर संख्या में जनपदवासी महिला आई स्कूली लेके शामिल भेल हैं। इस मौका पर मुख्यमंत्री कहने कि भारत का आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा हमने के क्रांतिकारी स्वाधीनता संग्राम सेनानी लोगों के बलिदान के अमित गाथा को नाव हवे।
2: उत्तर प्रदेश में इस वर्ष हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का। हर संस्था, हर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी इंस्टीट्यूशन में, उद्योगों में, व्यापारिक संस्थानों में, घरों में तिरंगा लहराया जाएगा।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल भेलिन। यह मौका पर वहां के मेधावी विद्यार्थियों के मेडल देहनी। अपने संबोधन में राज्यपाल कहलिन कि कृषि का भविष्य खेतन के साथ ही विश्वविद्यालय आ प्रयोगशालों में तैयार हुई। वहां के कहने की बदलत मौसम, घटत पानी का उपलब्धता जैसन चुनौतियों के बीच सिंचाई प्रबंधन, डिजिटल कृषि AI जैसन टूल्स किसानन बदे बढ़न बदलाव का वाहक बन सके न। प्रदेश के कई जिलों में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनावल गयी। इसमें 19 वर्ष तक के लड़कन के पेट से कीड़ा निकलने का दवाई खियावल गयी। चंदौली में ऊर्जा का जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग अभियान का शुभारंभ कैले। वहां के खुदे स्कूली छात्रा लोग इनके कृमि मुक्ति का दवाई खियोनी। गोरखपुर जिला में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनय पांडे चरगावा के जनता इंटर कॉलेज से अभियान का शुभारंभ कैले। ये मौका पर शिविर लगा के ओजा मौजूद विद्यार्थी लोग इनके स्वास्थ्य का जांचो कैल गये। सावन महीना के दूसर का सोमवार पर प्रदेश के सज्जो शिव मंदिर में श्रद्धालु आज भोरवे से भगवान शिव को जलाभिषेक कई के पूजा अर्चना कई धाल हमें। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के साथ ढेर संख्या में कांवड़ियों जलाभिषेक कई रहा हमें।
3: श्रावण मास के पावन दूसरे सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर भव्य एवं भावपूर्ण स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा से श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का संचार हुआ तथा पूरा धाम हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। भगवान श्री विश्वेश्वर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु धाम पहुंचे हैं। श्रावण के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ धाम का वातावरण पूरी तरह शिवमय नजर आ रहा है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: अयोध्या का श्री नागेश्वरनाथ मंदिर और गोरखपुर का श्री मुक्तेश्वरनाथ मानसरोवर मंदिर के साथ ही प्रदेश के कई गोरियो मंदिरों में श्रद्धालु भगवान शिव का पूजा अर्चना जलाभिषेक कई रहा हमें। उत्तर प्रदेश शासन श्रद्धालुओं ना कांवड़ियन बदे पुरहर इंतजाम कई दे हो। मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगला 2 दिन ले कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथ बौछार पड़ने को संभावना जतौले हो। विभाग इलाकन में अजू कहीं कहीं बादल गरजले के साथ ही बिजली गिरले का येलो अलर्ट जारी कर दीबा। समाचार पूरा भाई, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के तहत सुनिए आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे और संसद समीक्षा रात्रि 8 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 पर और किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत का

प्रसारण समय होगा शाम 6:30 पर। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा दांतों की सुरक्षा कैसे करें, इस विषय पर डॉक्टर अमर अनुपम से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत, और साथ ही साथ सुनिएगा रामनारायण मौर्य और साथियों का गाया लोकगीत भी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल 11 अगस्त दिन मंगलवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 10:00 और संसद समीक्षा रात्रि 8:00। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर और दिन 12:45 पर सुनिएगा डॉक्टर श्यामा कुमारी का गायन, और शास्त्रीय संगीत के अन्य कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे डॉक्टर प्रभा अत्रे का गायन। किसान वाणी इस कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे खरीफ में सब्जियों को हानिकारक कीटों से बचाए, इस विषय पर डॉक्टर कुलदीप सिंह की बातचीत। अलावा इसके सुनेगा नीरज त्रिपाठी का गाया लोकगीत भी। श्रोताओं, इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकेंगे दिन में 1:45 पर और सुबह 9:50 पर भी। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना के अलावा सुनिएगा रजनी चौहान का काव्य पाठ भी, और साथ ही साथ आनंद लीजिएगा गीत संगीत का भी। धरती के गीत इस कार्यक्रम में शाम 5:00 सुनिएगा अप्पा नाथ और साथियों का गाया राजस्थानी गीत।

ग्रामीण बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम अंगने या दिन में 1:15 पर। इस कार्यक्रम में अन्य बातों के अलावा सुनेगा गांव की सखी सहेली आशा और आंगनबाड़ी की भूमिका। इस विषय पर आकांक्षा सिंह की बातचीत, अलावा इसके बहनें सुनेंगे गीत संगीत भी। सुगम संगीत में दिन 12:30 पर सुनेगा रुचि मिश्रा के गाये गीत और भजन। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा दिन में 11:00 और सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा का प्रसारण समय होगा दिन में 8:45 पर।

गुड मॉर्निंग बनारस, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे और श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ का प्रसारण समय होगा सुबह 6:40 पर। स्वास्थ्य चर्चा, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बरसात के मौसम में होने वाली समसामयिक बीमारियां और होम्योपैथिक उपचार, इस विषय पर डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता की दी गई जानकारी। प्रसारण समय होगा सुबह 6:35 पर। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे सुबह 6:10 पर और खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 6:05 पर सुनेगा आम की बागवानी, इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में हम हाजिर होंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम के साथ। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658,
4: 0542227658।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। दलेर मेहंदी और के.एस. चित्रा की मिली जुली आवाजों में सुनिए रंग दे बसंती फिल्म का ये गीत।

0: सली मर्चेंट और मरियांडी क्रूज की युगल आवाजों में आप सुन रहे हैं चक दे इंडिया इस फिल्म का गीत और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। संसदा बैंकिंग व्यवस्थायाः आधुनिकीकरण विधेयकं स्वीकृतम्। लोकसभया तावत् अधिकरण परिष्कार विधेयकं च पारितं गतम्। झारखंडे परीक्षार्थीनाम् आंदोलनम् 17 दिवसं व्याप्य प्रचलति। अशेषे हि देशे तावत् ध्वज यात्राणाम् आयोजनम् वर्तते। अपि च चीन देशे भीषण चक्रवातेन 10 लक्षतोप्यधिकाः जनाः स्थानांतरिताः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदा अद्य बैंकर्स बुक्स एविडेंस

पंचो राम राम। पंच लोग देखा कहल जाला कि भाई तंदुरुस्ती जौन हजार नियामत हो। एकर मतलब है भैया कि जितना भी हो सके जतन कह के मेहनत कह के परिश्रम कह के जौन अपने तंदुरुस्ती माने अपने स्वास्थ्य के भैया हो बचावे के हो अपने स्वास्थ्य के संभारे के हो। तो एकरे बदे भाई जनता हुआ कि स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेला तो आपन

जोन शरीर है ओके कुछ न कुछ चीज चाहेला, कुछ न कुछ तत्व चाहेला, जैसे कि ये शरीर जोन है आगे काम कर सके। अब भाई ये शरीर के ऊर्जा ताकत ये कुल बदे भोजन मनई करेला, पानी पिएला या और भी तरह के चीज होला जेकर सेवन करे, आ ओकरे कैले से सेवन भाई अपन शरीर जोन है भैया सही रहेला। हमहन तो भाई देखा खेती किसानी वाला है ही जा, तो पंच लोग हमहन के अपने खुराक ध्यान देवे के हो, कहे कि परिश्रम ज़्यादा करी ला जा। अब खुराक भी भैया हो कैसन रहे के चाही, तो विज्ञानी लोग विशेषज्ञ लोग ही बतावे न भैया कि ऐसन हो कि जो खान पान है वो संतुलित होए के चाही। ई ना हो कि माने कहीं गयल या घर ही बा तो कुछ चीज़ पसंद बा, तो होला का कि जोन चीज पसंद है मने कहला कि भैया यह बनावा एके ज्यादा कैदा हम खाब, ऐसा ना। जोन चीज जितना जरूरी है उतने करे, आ कहल भी है कि अति सर्वत्र वर्जते, तो अति का वर्जना है भैया एकर ध्यान देवे के हो। तो संतुलित मात्रा में अपन आहार लेवे के हो, आ संतुलित तरीके से अपन दिनचर्या भी जिए के हो। हमहन तो मान ला कि भाई दाणे खेती किसानी जाई ला जा तो मेहनत का काम हो जात है, तो खुराक तो जाहिर सी बात है भैया तनी ज़्यादा रही सब लोग से। तो जे शरीर वाला मेहनत करत हो ओकर खुराक बढ़ जाला, और ओहू में भैया पौष्टिक चीज़ जोन है ओकर भी हमहन के इस्तेमाल करे के हुई खान पान में अपने। आ जैसे हो कि अनाज के रूप में मने ज़्यादातर देखा तो भात खात बा, रोटी खात बा, या अपने यहाँ अगर बजड़ी बजड़ा मिल गल तो ओकर जो है लिट्टी लगा के भी खा लेत बा। तरकारी हो गई नहीं, तरकारी से पंच लोग देखा कुछ तरह का विटामिन वगैरह मिल जाला, तो जेके जो है शरीर के बड़ा ज़रूरत होता। अब जैसे डॉक्टर लोग कहना भैया हो कि आँख बदे जो है आ ओकरे बदे जो है विटामिन ए का ज़रूरत है। विटामिन ए के कहल जाए कि भाई सामान्य रूप से देखल जाए तो अगर पीला फल हो उम्मा मिल जाए, या गाजर वगैरह हो गल उम्मा मिल जाए। आयरन का भी ज़रूरत होला शरीर में खून के दौड़ा बदे, भाई मेहनत का काम हो खून रही शरीर के अंदर तब जो है दौड़ा करी, आ दौड़ा करी जब खून पंच लोग तब न जो है मेहनत का काम हो पाई शरीर चल पाई। तो पालक में कहल जाला कि भाई जो है आयरन का मात्रा रहेला, आ गुड़ों में जो है मिल जाए अगर ऊखी का रस वस पियत है जाए तो उसे मिल जाए। तो ये तरह से देखल जाए तमाम तरह का जोन है खान पान हो जेकर अगर इस्तेमाल करे व्यक्ति खाए में अपने, तो अपने शरीर के भाई सही रख सकत हो। विटामिन के साथ प्रोटीन हो गल, तो प्रोटीन कहल जाला कि गाय के दूध में बहुत बढ़िया से ये मिल जाए। और भी हरी सब्जी हो गल, अंकुरित अनाज हो गल ना भाई, हमन पहले भी रहा कि भाई जो न बिहाने तनी घुघरी वगैरह जो न खा लेवल जाए चना का ये सब का, आ ऊखी का रस पी ले, आ ई कुल खराई करके अपन मने चल जाए खेती किसानी अपन करे। आ ओकरे बाद जो न चौचक आवे जब मेहनत वहनत करके तब जो न जाके भोजन बढ़िया से करे। आ दूध जो न भैया लेवल जरूरी है, काहे कि शरीर के हड्डी जोन है ओमा कैल्शियम ओकरे बदे चाही, आ दूध पियले से भैया हो ई जोन है शरीर के हड्डी जोन है वो मजबूत रही, तबे जोन है काफ़ी समय तक अपन हमहन काम कर सकत है जाए, चाहे खेती किसानी हो या और भी तरह का हो ओके। आ लड़कन जोन बढ़े वाला हूँ छोट बच्चन हूँ उन्होंने बदे तो बहुत जरूरी है प्रोटीन, काहे कि शरीर के विकास बदे जरूरी है। तो बढ़िया विकास कर गल रही हैं तो देश के विकास में भी योगदान दी हैं। तो पंच लोग देखा अपने भोजन में जोन है सबके ये ध्यान देवे के हुई कि संतुलित जोन आहार है ओकर कैसहू न कैसहू व्यवस्था करे, अपने बदे भी करे आ अपने बाल बच्चन बदे भी करे, आ साथे साथे अपने गोरु चौवन के बदे भी संतुलित आहार का व्यवस्था कर ले, ताकि ओसे भी जोन है दूध वगैरह बढ़िया से मिल सके। आ ये नहीं कि माने अपने बच्चन का बस ध्यान दे, अपने शरीर का जोन है ये देखल जाला कि अगर माई बाबू हुआ तो वो बच्चन बदे थोड़ा ध्यान दिया आपन ध्यान ना दिया, तो यही चीज़ ना करे कि भैया बच्चन पे थोड़ा खास ध्यान दा लेकिन अपने भी शरीर का ध्यान दा, काहे कि बुढ़ाई में भाई ये शरीर काम दे ही,
अगर ओसे कुल नित्य क्रिया होत रहल तो समझला कि बहुत बढ़िया जीवन बीतत बा। तो ए बदे जौन ह ये जरूरी है कि सब लोग अपने शरीरी का ध्यान दें, आहार जौन है उनकर खान पान जौन है वो संतुलित रहे के चाहिए। हर चीज़

0: मात्रा के हिसाब से थोड़ा थोड़ा थोड़ा सेवन करत रहें। आ देखा अब ही ये शरीर के संतुलन का बात रहल है, तो अपने शरीर में जोन दांत है भैया, तो जोन भोजन है ओके बढ़िया से चबाए का काम, काहे कि हर चीज़ ये ना करे के है कि पेटे के जोर दे दे कि अंदर कैला, अब जोन हो पेट ओकर मशीनरी पेरत बा और तमाम तरह का समस्या हो जाए। तो ए बदे बढ़िया से डॉक्टर लोग भी कहे ना कि भैया दांते से पीस के एकदम जोन हो तब अनाज के भोजन के अंदर ले जा, ताकि तनी कम काम करे के हो पेट के। तो भाई दांत अपन सुरक्षित कैसे रहें, का बात का ध्यान रखें, तो यही विषय पर एक ठे बात कही है कि कौने तरीके से अपने दांत का सुरक्षा कैल जाए। ए पर जो है डॉक्टर अमर अनुपम से दिनेश कुमार सिंह का बात कही है, पंच लोग ये बात कही कि सुने, फिर अपन चर्चा हुई।
1: भी आज अपन बीच में डॉक्टर अमर अनुपम जी आयल बाटे। आप दंत रोग विशेषज्ञ हुए वाराणसी में। डॉक्टर साहब बताई हैं कि दांत की सुरक्षा कौन तरह से की जाए। डॉक्टर साहब अगर दांत को लोग देखभाल ना करें तो परेशानी का हो सकता है।
2: बहुत परेशानी हो सकती है। और दांत के अगर स्वस्थ दांत रहेगा तो स्वस्थ शरीर रहेगा, अगर दांत ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप अच्छे से खा चबा नहीं सकते हैं, हमेशा आपको आपके मुंह से दुर्गंध आती रहेगी, दांतों में दर्द असहनीय पीड़ा हो सकती है। और जैसा कि हम लोग काशी के क्षेत्र के निवासी हैं, यहाँ पर पान का भी सेवन करने का चलन आम तो आम लोगों में बहुत अधिक है, तो वो भी एक बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकता है जो है।
1: अच्छा, जैसे लोग पान खात बैठे तो उतने सफाई भी जरूरी है ना?
2: एकदम सफाई की जरूरी बहुत जरूरत है। जब भी आप कुछ भी खाएं तो अगर सुबह में तो जैसे सभी का एक आदत बना हुआ है कि सभी लोग को ब्रश करना ही है, हम लोग हमेशा जो है कि इन बातों पे प्रकाश डालते हैं कि रात में सोने से पहले भी ब्रश करना है। लेकिन अगर कभी आप पान या फिर इस ढंग की कुछ चीजें एसिडिक चीजें खाते हैं तो पान खास करके पान अगर पान कसली और सुपारी ये सब चीजें होती हैं दांतों के इर्द गिर्द फंस जाती हैं, और वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए क्योंकि दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है जो है। और कभी अगर गलती से खा भी लिए तो उसके बाद मुंह का अच्छे ढंग से कुल्ला करना, ब्रश करना, इन सब नितांत आवश्यक है।
1: और जो लोग सुरती वगैरह खाते हैं।
2: वो तो सुरती खाना, जैसा कि हम सभी जानते हैं, तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में, चाहे सुरती हो, चाहे गुल हो, चाहे खैनी हो, किसी भी फॉर्म में आप अगर तंबाकू ले रहे हैं तो आप जो है कि कैंसर को जो है निमंत्रण दे रहे हैं। तो वो जानलेवा, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, अगर सही समय पर उसकी सही ढंग से रोकथाम नहीं हुई, उसको अपनी आदतों को नहीं सुधारा गया तो घातक साबित हो सकता है।
1: तो कौन कौन सा देखभाल करें अपने दांत को लोग कि दांत स्वस्थ रहे?
2: सबसे पहले जो है कि ब्रश करने वाली समस्या, ब्रश करने का जो आदत है उसको सुबह करें और रात में सोने से पहले जरूर करें। और माउथ वॉश का सेवन जो है कि अपने दिनचर्या में आदत में डालें कि माउथ वॉश का सेवन करें। अगर माउथ वॉश नहीं कर पाते हैं तो घरेलू उपचार जो है गुनगुने पानी में नमक डाल के भी अगर कुल्ला कर लेते हैं तो वो भी माउथ वॉश से भी बेहतर है। वो जो है अगर खुद में घर में घरेलू उपाय है कि घर में हल्का सा गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर लेते हैं तो वो बहुत बहुत आपके दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अगर दांत के इर्द गिर्द अगर कुछ भी फंसा हुआ है तो वो गुनगुना पानी से उसमें जो है कि नरमाहट आएगी और वो धीरे धीरे वो मसूड़ों और दांतों के इर्द गिर्द जो जमी हुई गंदगी होगी वो निकल जाएगी जो है। और दांतों और मसूड़ों के बीच में जो बैक्टीरिया का कॉलोनाइजेशन होगा या एसिड फॉर्मेशन होगा वो माउथ वॉश करने से वो खत्म हो जाएगा वो उस कुछ समय के लिए। तो इसलिए अगर मान लीजिए आपके मुंह से दुर्गंध आती है या फिर मसूड़ों की समस्या है तो इस ढंग से आप जो है कि सुबह शाम ब्रश करने के साथ साथ दिन में कम से कम 2 से 3 बार कुल्ला जरूर करें, नहीं गुनगुना पानी मिले सादे पानी से ही कुल्ला करें, तो इन सब बातों का ध्यान रखने से आपका मुंह का स्वास्थ्य।
1: अच्छा डॉक्टर, जैसे क्योंकि बगल अगर बैठे तो कभी कभी उनके मुंह से दुर्गंध आवत बाटे, तो कोनो बीमारी भी रहते है खाली वैसे साफ सफाई के बाद?
2: हाँ देखिए, बीमारी जो है कि वो सब कुछ जो है कि अगर साफ सफाई नहीं होगी तो जैसे धीरे धीरे बैक्टीरिया का कॉलोनाइजेशन होता है दांतों पे, आप देखते हैं कभी जीभ से आप छूते हैं तो दांतों के ऊपर एक हल्की सी चिपचिपी सी परत जमी रहती है, यही धीरे धीरे जो है कि जमते जमते जमते स्लाइवा के कॉन्टेक्ट में आते आते ये धीरे धीरे हार्ड हो जाता है और ये दांतों और मसूड़ों के बीच में जम जाता है और मसूड़ों को धीरे धीरे नीचे की तरफ ढकेलने लगता है, तो उससे आपके मसूड़ों में सूजन आती है जो है, रेडनेस हो जाता है।

0: यही जब रेडनेस हो जाती है, सूजन आ जाती है, तो वो धीरे धीरे मुंह से जो है कि दुर्गंध आने की समस्या उत्पन्न होता है, और आगे चल के जो है दांत भी लूज होने के, दांतों में हिलने जैसी समस्या आ जाती है। तो अगर कभी भी आपको इस ढंग की समस्या, थोड़ा सा भी दुर्गंध आया, मसूड़ों से कभी खून आने की शिकायत हो, तो आप तत्काल अपने दंत चिकित्सक के पास जाएं, जो भी नजदीक में हो आप जाएं, और दांतों की सफाई कराएं। क्योंकि आमतौर पे एक ये भी धारणा बनी हुई रहती है कि दांत सफाई कराने से हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दांत आपको हर 6 महीने पर सफाई कराना चाहिए, जो डेंटल स्केलिंग बोलते हैं, उससे दांतों और मसूड़ों को बहुत बल मिलता है, मजबूती मिलती है, और आपका मुंह का स्वास्थ्य उत्तम होता है।
1: अच्छा, अगर कायदे सफाई करत बाटे हैं, ब्रश करता है या दातुन करत बाटे हैं, तब तो सफाई करे जरूरत ना रहे डॉक्टर वाला।
0: नहीं, अगर ब्रश आप कर रहे हैं, दातुन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ ऐसे जगह होते हैं, जैसे इंटरडेंटल, दो दांतों के बीच की जो जगह होती है, वहां पे आपके ब्रश अच्छे ढंग से नहीं पहुंच पाते हैं जो है, तो आपको सफाई जो है डेंटल डेंटिस्ट के पास जाके आपको कराना नितांत आवश्यक है, करा लेना चाहिए। 6 महीने में नहीं करा पा रहे तो साल भर में करा लीजिए, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं है, उससे फायदा ही है। आपका मुंह का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपको जो है कि हमेशा ताजगी महसूस होगी, आपके दांत मजबूत होंगे, मसूड़े मजबूत होंगे, और उसी क्रम में कहीं अगर दांतों में सड़न उत्पन्न हो रहा होगा, कहीं अगर छोटी मोटी कैविटी उत्पन्न हो रही है, तो भी डॉक्टर आपका देख लेगा, आपको सलाह देगा, भैया आप इसमें दांतों में फिलिंग करा लीजिए, इसमें सीमेंट भरवा लीजिए, तो जो दांत आपके जो आगे चल के जो सड़ने वाले होंगे या फिर दर्द होने की समस्या भविष्य में होने वाली हो, तो प्राइमरी स्टेज में पता चल जाएगा।
1: जी, तो अगर ब्रश करे के बाटे तो एक बार तो सुबह लोग कर भी करते हैं और रात में खाना खाए के बात करें।
0: रात में खाना खाने के बाद एकदम जरूर से करें, क्योंकि जब भी आप खाते हैं तो खाने के कुछ कण जो है वो दांतों और मसूड़ों के बीच में छुपे रह जाते हैं, या फिर अच्छे ढंग से सफाई नहीं हो पाता है, तो आप जब सो जाते हैं तो रात भर में वो जो है कि जो भी खाद्य पदार्थ आपके दांतों मसूड़ों के बीच में जो पड़े रह गए, बचे रह गए, तो रात भर में वो उसमें सड़न पैदा होती है, उसमें एसिड फॉर्मेशन होता है, जो कि दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक है जो है। तो रात में ब्रश कर लेने से सोने से पहले वो बहुत उत्तम रहेगा।
1: अच्छा, सुबह भी, सुबह अगर खाना खाए के बाद करें, कुछ वजह से सवेरे उठे पहले ब्रश कराते हैं?
0: नहीं, देखो सुबह जो है खाना खाने के बाद नहीं, आप सुबह उठे और उसके बाद पहले ब्रश करें, उसके बाद जो है कि आप अपना दिनचर्या की शुरुआत करें जो।
1: अच्छा, खाना खाए के बाद मतलब वो दांत साफ कर लें अंदर से, अगर ब्रश न भी करें?
0: हाँ, खाना जैसे अगर मान लीजिए चिपचिपी चीज कुछ खा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें फाइबरस फूड खा रहे हैं जिसमें दांतों के बीच में फंसने की समस्या हो रही है आपको, तो जो आप ब्रश कर ले तो बेहतर रहेगा। तो उसमें कुछ ऐसा परहेज नहीं कि 2 बार के बाद भी आप अगर कर लेते तो नुकसान। कुछ लोगों का दांत नेचुरली बहुत आपस में कसा हुआ होता है, कुछ लोगों के दांत में थोड़ा सा गैपिंग शेयर जैसा होता है, जो गैपिंग होती है, तो सबका बनावट अलग अलग है, तो सभी समस्याएं अलग अलग है। तो अगर जिनमें अगर इस ढंग से गैपिंग है या फिर खाना फंसने की समस्या उत्पन्न हो रही है, उनको अपने मुंह के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए अत्यधिक सफाई, साफ सफाई रखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है,
1: तो ब्रश अगर करते बाटे तो कौन तरह से करें?
0: ब्रश जब भी करें तो सामने के दांतों को अप एंड डाउन, अब ऊपर नीचे की तरफ करें, फिर गोल गोल छल्ले नुमा जैसा घुमाएं, पीछे के दांतों को जो है ऊपर नीचे करके करें, फिर पीछे भी गोल गोल छल्ले नुमा घुमाएं, दांतों की सतह को, जो ऊपर का जो सतह है उस पर जरूर अच्छे से मांजे जो है, और फिर जो है कि थोड़ा सा ब्रश को हल्का सा 45 डिग्री में आप जैसे हल्का सा तिरछा करके दांतों के ऊपर के दांतों पे, या फिर जहां पे आपका जीभ जाके रुकता है, खास करके नीचे की जगह पे जो है वहां पे जो है कि गंदगी सबसे ज्यादा जमती है, क्योंकि वहां पे हमेशा टंग आपका जीभ रेस्ट कर आराम करता है, तो वहां पे जो भी कैलकुलर स्टार्टर डिपोजिशन होते हैं तो धीरे धीरे हार्ड होते जाते हैं जो है, तो वहां पे अच्छे से जो है कि आपको ब्रश ले जाना है, दो दांतों के बीच में उसको वो करके नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ करना है, ऊपर के दांतों में ऊपर से नीचे की तरफ करना है, कि जो भी गंदगी हो बाहर की तरफ निकल जाए जो है, तो इससे आपके मुंह का स्वास्थ्य और आपके दांत बहुत स्वस्थ रहेंगे जो है।
1: जो लड़कियां लोग बैठे ना, उनका क्या सावधानी बरतें लोग?
0: छोटे लड़कों, जैसे सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में आजकल जंक फूड खाने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने का प्रचलन बहुत बढ़ गया। ये आप
1: भी आज अपन बीच में डॉक्टर
0: परमानेंट टूथ जो है, पक्के दांत आ रहे हैं, उसके जो बर्ड्स होते हैं छोटे मोटे, तो उसको भी नुकसान।

0: नुकसान पहुंचाता है।
1: तो
0: जो भी कुछ भी समस्या हो तो आप उसको तो अपने चिकित्सक पास जाकर दिखाएं और उसका इलाज कराएं। आजकल के बच्चों में पिज्जा बर्गर और ये सब खाने का प्रचलन आ गया है। पहले होता था कि बच्चे चना भी खा रहे हैं, रोटियां भी घर में खा रहे हैं। आजकल बच्चे मुलायम चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तो उनसे उनके दांतों और जबड़े का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो जब दांतों का आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो आपके दांत समय से टूटेंगे ही नहीं, तो पक्के दांत आने में डिले होगा, या फिर दूध के भी दांत पड़े हुए हैं और पक्के दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, तो ये सब समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए जो है कि कड़ी चीजें खाने से आपके दांत जो है दूध वाले सही समय से टूटते भी हैं और पक्के दांत को भी आने में सुविधा होती है।
1: जी जी जी। आखिर में डॉक्टर साहब एक चीज और बता मैं कि लोग अक्सर दांत चमकावे के लिए बालू का प्रयोग करते हैं, कोयला का प्रयोग करते हैं, राखी प्रयोग करते हैं, तो इससे कुछ फायदा होते हैं उनका?
0: इससे फायदा नहीं बल्कि बहुत नुकसान पहुंचता है। कभी भी आप बालू राखी किसी भी ढंग की इससे जो दर्दरी चीजें हैं, अब मान लीजिए मुलायम भी चीजें हैं, तो इससे नहीं करना चाहिए। ये हमारे दांतों पे जो इनामेल होता है, ऊपरी वाली सतह जो थी, इसमें बहुत ज्यादा रुखरापन ला देता है। और बार बार अगर आप रेगुलर कर रहे, कोई भी आदमी या फिर औरत कोई भी करता है ब्रश, तो एक उंगली पे लेके या ब्रश में लेके रगड़े जा रहा है, तो उसमें घर्षण होने से दांतों का इनामेल जो है घिस जाएगा, और जिससे कुछ दिन बाद जो है पानी लगने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जो तो फिर असहनीय पीड़ा होगी। इसलिए कभी भी इस ढंग से जो है राखी मंजन या फिर राखी हो गया, फिर मट्टी हो गया, कोयला, सबसे बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, इन सबों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए।
1: यानी जो दांत का रंग बांटे हुए रहे उन्हें सफेद बहुत चमकीला न हो।
0: सभी लोगों का दांत का कलर अलग होता है, रंग अलग होता है। जैसे आप परिवार में ही 5 से 10 है तो सबका कोई सांवला है, कोई अधिक सांवला है, कोई गोरा है, इस ढंग से सबका कलर दांतों का, सबका चेहरे का कलर अलग है। उसी से हम अगर आपस में एक दूसरे का दांत का कलर मिलाए तो कोई किसी का व्हाइटिस पे है, किसी का ग्रेइस पे है, किसी का येलोइस पे है, किसी का ब्लैकिस पे है, कालापन पे है, या फिर अलग अलग दांतों का कलर। ये हमारे दांतों का कलर, दांतों के अंदर जो नस होती है पल्प, उसके कलर के हिसाब से वो होता है। जो और आमतौर पर देखा जाता है, जो बहुत जो सांवले व्यक्ति होते हैं या फिर अगर मान लीजिए काले व्यक्ति होते हैं, उनका दांत आप देखेंगे बहुत सफेद होता है।
1: जी जी।
0: तो हम लोग रीजन में थोड़ा सा जो है कि हल्का सा क्रीमिश ढंग से होता है, तो वो नेचुरल है। सबका दांत का कलर अलग है, उसको बहुत चमकाने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा ज्यादा उस पर अगर चमकाने की आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो दांतों पर घर्षण होकर दांतों को इनामेल को नुकसान पहुंचेगा और जो आगे चल के बहुत पीड़ादायक कष्टदायक हो जाएगा।
1: जी। तो दांत की सुरक्षा कोने तरह से की जाए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दें डॉक्टर साहब। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंच लोग देखा भाई, अपने शरीर का जौन भी अंग हो समझला कि सब कीमती हो। दांते अगर जैसे आज चर्चा भयल है कि दांत का अपने सुरक्षा कैल बहुत जरूरी है भाई। कहें कि जो उन्हें भोजन जो उन करल जात है तो मुंह में जब डाला तो पहला जो उन्हें भेंट वो दांत से हुई, और दांत जो उन्होंने चबा के एकदम बढ़िया से बनाई कि पचे लायक हो जाए। तो अपने दांत का सुरक्षा कौने तरह से कैल जाए, यह विषय पे जो है डॉक्टर अमर अनुपम से दिनेश कुमार सिंह बतियौना है। आ कुल बात भैया एकदम मार्के कर रहा है, आ देखल जाला कि जैसे हो का कि मनई बड़ा जल्दी जल्दी में जो न दतुअन मंजन कह लेवे न कि भाई फट से कैला कह के जो न खुराकी लेवे के हो, तो आदत जो न पंचलोक ठीक ना है। बड़ा तरीके से कहें कि मसूड़ा के साथे दांत लगल रहला भैया, मसूड़ा के कोनो नुकसानी ना होए के चाही। अगर मसूड़ा के नुकसानी हो था तो अपने दांत के भी नुकसानी हुई। तब बहुत धीरे धीरे जौन है अपने अंगुरी से चाहे ब्रश से और अपने मसूड़ा के भी करे के है, दांत के भी भैया साफ करे के, ऊपर वाले दांत के देखा बताऊना कि ऊपर से नीचे की ओर ले आवा कि कोनो भी चीज़ अगर फसल हो तो भाई वो दूर हो जाए, निकल जाए बहरे। आ दो बार तो कम से कम भैया जौन है अपन दांत साफ कर ही के है कि कौनो भी कण जौन है दो दांत के बीच में फसल न रहे, नहीं तो वह सड़ी, और सड़ले के बाद अगर सफाई ना भल तो वह अपने दांत के नुकसानी पहुँचाई। तो ये चीज़ का भैया बहुत कायदे से ध्यान रखे। आ कौनो दर्दरी वाली चीज़ के भी कहना है डॉक्टर साहब कि जौन है ओके ना करे के है, तो यहू का ध्यान दिया भैया। आ देखा अपने पंचायती में पंच लोग और बत कही होई, लेकिन तनी हो जाए मन मनसायन। आ ओकरे बदे राम नारायण मौर्या और उनके साथी लोगन के जौन गौनई है ना, एक सुनल जाए।

पंचलोक सखी सावनी शरीर। अब भाई देखा राम नारायण मौर्य उनके साथी लोगन के गौनई रहल ह, आ कजरी के रूप में हमन सुन ली है जा। भाई देखा सावन चलत ह पंचलोक, आ सगरो जौन ह हरियाली आ गल ह, आ पहाड़ से लेके अपन खेती में भी सिवान भी जौन ह भाई हरियर भैल बा। आ पंचलोक देखा एक चीज ई ध्यान दे वाली ह कि जब बरसात होत है तो सगरो जौन हरियाली आवत है, लेकिन जब गर्मी के समय रहेला तो हमहन इतने तपन झेली ला जा, आ डाँडे रस्ते चलत के भी ई होला कि भैया काश एक ठे पेड़ रहत तो एंजा सुस्ता ले छहा ले। तो यह समय है भैया बरसात का कि ए घड़ी अगर चाहा तो सगरो हरियाली बदे पेड़ लगा सकत हुआ। आ लगाए के पंचलोग ओके भाई सहेजा आ सेवा ऐसन कि ऊ जौन है बढ़िया पेड़ के रूप में आ जाए, आ ताकि गर्मी के समय में ए तरह के समस्या फिर हमहन के झेले के न हो। आ कहल भी जाला भाई देखा अपने शरीर के स्वस्थ रखे बदे देखा भी चर्चा तो भयल है कि आहार जौन है संतुलित होए के चाही, विहार संतुलित होए के चाही। तब भाई अपने पर्यावरण में भी संतुलन बहुत जरूरी है पंचलोक, एके भी हमन के ध्यान देवे के होई। आ समस्या ई आवत बा कि भाई जौने हिसाब से

जनसंख्या बढ़त ह। तो सगरो जौन है भाई घर मकान बनावे के पड़त ह, आ साथे खेतियों के जरूरत बा अनाज बदे, तो जंगलों काट के लोग जौन है खेत के रूप में ओकर इस्तेमाल शुरू कर देले बाड़। तो ये चीज के रोके के हुई पंच लोग कहे कि अगर अपन पर्यावरण सही ना हो तब भी अपने शरीर के जौन है बहुत कष्ट हो, आ एकरे बदे भाई जौन अपने पर्यावरण में असंतुलन है चाहे वो प्रदूषण के रूप में है या कोनो और रूप में हो, तो एकरे बदे भाई हमहन के चेते के हुई जागरूक होए के हुई, तब जाके देखा सगरो जौन है हरियाली मनसायन खुशहाली रही। आ ए घड़ी हमहन के ध्यान देवे के अपन कि भाई पेड़ हमहन के सबके लगावे के, सब लोग अगर चाह दें अगर एकहको पेड़ लगावें, आ एक जिम्मेदारी खास तौर से लेवे के होई कि वो पेड़ के भाई सहेजें, ओके जैसे भी खाद पानी देवे के हो ओके दें, गोरु चौवन से भी ओके बचावें, तब जाके जोन पौधा लगल रही भाई वो पेड़ के रूप में परिणत हुई। आ जब पेड़ हुई तो समझला कि सगरो छाया रही आ हरियाली रही, ऑक्सीजन का मात्रा भी देखा अपने पर्यावरण में देखल जाए तो भाई संतुलित हो जाए। आ देखा कोरोना के समय में अभी तो बीतल रहल तो सब ध्यान देलस न कि भाई साफ सफाई से लेकर के अपने शरीर का भी सफाई आ आस पास का भी सफाई करे का ध्यान देलस, तब वो समय देखा कैसन माहौल रहल, लगे कि आसमान जो है बड़ा साफ हो गल है, आ प्रदूषण का जो स्थिति है उतनी कम हो गई, भाई गाड़ी घोड़ा कम चलना, तो जाहिर सी बात है कि वो तरह का प्रदूषण अपने पर्यावरण में ना हो पाएल। तो पंच लोग एक ध्यान देवे के हुई, सबके जागरूक होए के हुई, लड़िकन तो भाई देखा आज के समय में देखल जाए तो जागरूक हमन से ज़्यादा हो गल बाण, कुछ गड़बड़ी करा तो जो न टोकी हैं कि भाई चचा बाबू ई काम ना करे के हो, मतारी ई काम ना करे के हो, तो स्कूले में ही बतावल गल हो, ये कुल चीज़ हमन के सुने के आवेला, तो ऐसन हमहन के न सुने के हमहन बच्चन के बतावल जाए, एकर ध्यान देवे के हुई। अपन चलोग देखा बोलत बतियावत हमन के चले के बेला भल, लेकिन जोन काल का कार्यक्रम हो ओके काल माने अपन जोन कृषि जगत का कार्यक्रम हो या खेती का बात हुई, तो जनता हुआ खेती के बाद 6:05 पे हुई काल, आ एम्मा आम के बागवानी पे जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह, आ अपन कृषि जगत कार्यक्रम 12 अगस्त 2026 के संध्या के 6:30 पे हुई। एम्मा भाई दूरस्थ शिक्षा एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली हो, यह विषय पे जौन है डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे से रामकृष्ण मिश्रा का बातचीत हो, तो एक पंच लोग सुनिए आ चलत चलत जौन है अब जय श्री राम आ पंचो राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:38 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सुनिए मोहित चौहान की आवाज में तनुवेड्स मनु का ये गीत।

उद्भव और साथियों की मिलीजुली आवाजों में अभी आप सुन रहे थे मोहब्बती फिल्म का गीत, और अब आइए सुनते हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की युगल आवाजों में वास्तव फिल्म का गीत।

0: या 7007494997 इस नंबर पर सूचित करें। सुनिए एक और सूचना। सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली वाराणसी से प्राप्त सूचना अनुसार तेजस्व उर्फ हर्षित 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को सुबह लगभग 5:30 पर अपने घर घसियाली टोला राजघाट से बसंत कॉलेज राजघाट टहलने के लिए गए और वापस नहीं आए। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनकी उम्र है 20 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच, रंग सांवला और शारीरिक बनावट सामान्य है। ये काले रंग का जीन्स, नीले रंग का टी शर्ट और काले रंग का जूता पहने हुए हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाना या 9454404376 नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9454404376 इस नंबर पर सूचित करें। सुनिए एक और सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना अनुसार सुरेश प्रजापति पुत्र पन्ना प्रजापति 8 मई 2026 को रात में कहीं चले गए और वापस नहीं आए। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनकी उम्र है 38 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच और इनका रंग सांवला है। ये भूरे रंग का टी शर्ट, नीले रंग का लोअर और पैरों में जूता पहने हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाना या 7266836356 इस नंबर पर सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:18 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में यानी ठीक 7:20 पर आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुनिए, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर वाराणसी से प्राप्त सूचना अनुसार हनुमान सिंह 6 मार्च 2025 की सुबह लगभग 5 बजे बिना किसी को बताए कहीं चले गए। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनकी उम्र है 81 वर्ष, कद 5 फीट 1 इंच और इनका रंग गेहुआ है। इनकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है। ये गुलाबी रंग की कमीज, भूरे रंग का पैंट और ग्रे कलर की टोपी लगाए हुए हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाना

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: Hey guys, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
6: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
7: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
5: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
5: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
7: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे समेत राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात। कहा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बनेगी यह कामयाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। राज्य में 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का तय किया लक्ष्य। प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकाया

दारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू, ब्याज और सरचार्ज पर 100% छूट, करदाताओं को 3 किस्तों में भुगतान की सुविधा। और सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़, वाराणसी बागपत गाजियाबाद में कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा।

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे समेत राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को खेलो इंडिया की गरिमा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत अस्मिता डे से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने वाराणसी में खेल सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर होता है।
1: वाराणसी में खेल की तो प्रैक्टिस कर रही थी ना?
2: जी सर, बहुत
1: कैसा बना है स्टेडियम?
2: सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी, और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है। सर साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर, और मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी।
1: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ।
0: भारत ने 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है। पदक विजेताओं में उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक और गुलवीर सिंह ने एथलेटिक्स में रजत और कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज गोरखपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ करने से पहले उन्होंने नगर निगम परिसर में स्थापित महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमिट गाथा का नाम है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं और उसके साथ सेल्फी लेकर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य तय किया है। यह कार्य राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।
3: राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है, उस अमिट गाथा की प्रेरणा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे, और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
0: वहीं जालौन, बलरामपुर, अयोध्या समेत कई अन्य जिलों में भी आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। श्रावस्ती में राप्ती नदी में एसडीआरएफ और फ्लड पीएसी ने बोट से तिरंगा रैली निकाली। उधर वाराणसी में हर घर तिरंगा अभियान में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 800 महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ये महिलाएं करीब 3 लाख राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने में जुटी हैं। अभियान के तहत वाराणसी की 694 ग्राम पंचायतों तक ये तिरंगे पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में एक मुश्त समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना की अवधि 4 माह निर्धारित की गई है, और इसका क्रियान्वयन 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। सरकार ने ओटीएस के अंतर्गत बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए अधिकतम 3 किस्तों की सुविधा भी प्रदान की है। करदाता को

0: योजना लागू होने की तिथि से 30 दिन के भीतर कुल बकाये की 1/3 धनराशि जमा करनी होगी तथा शेष 2/3 धनराशि अगले 2 माह में 2 मासिक किस्तों के माध्यम से जमा की जा सकेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बागपत में भी पुलिस टीम ने बरनावा कांवड़ मार्ग पर कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की। रामनगरी अयोध्या में भोर से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान कर प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। सर्किल ऑफिसर आशुतोष तिवारी ने बताया कि पूरे इलाके को अलग अलग सेक्टर और जोन में बांटा गया है और कांवड़ियों के आने जाने वाले इलाके को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है।
1: सावन के दूसरे सोमवार के दृष्टिगत भारी संख्या में जो है कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ आई हुई है। उनकी सुरक्षा के लिए जो संपूर्ण क्षेत्र है नागेश्वरनाथ वगैरह पे सेक्टर और जोन वाइज ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से सभी जगहों पे सतत निगरानी की जा रही है। साथ ही जो भी आपका कांवड़ियों का क्षेत्र है उसको नो व्हीकल जोन घोषित करके उसे हम लोग स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करा रहे हैं।
0: गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में भी सावन के दूसरे सोमवार को पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सावन के सोमवार के मौके पर मंदिर में विशेष सजावट और पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रियों पर पुलिस प्रशासन और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने विभिन्न स्थलों पर पुष्प वर्षा भी की। गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मानदंड ने बताया कि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
2: ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हैं। पीए सिस्टम के माध्यम से लोगों को भी लगातार सूचित किया जा रहा है और हमारे जितने ऐसे क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर कोइंसाइडिंग होती है वहां पे पुलिस का और सिविल डिफेंस का डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया है। अलग अलग कांवड़ शिविर हैं 300 से ऊपर जो लगातार भोजन पानी और विश्राम की व्यवस्था कर रहे हैं। 26 से ऊपर चिकित्सा शिविर हैं जो चिकित्सा सहायता हमारे कांवड़ श्रद्धालुओं को उपलब्ध करा रहे हैं और 4,000 से ऊपर पुलिसकर्मी हैं जो इस पूरी व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं।
0: उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। छात्र 25 अगस्त 2026 तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे जबकि वर्ष 2026-27 सत्र के नए छात्र 11 अगस्त से 21 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की गई है। राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में आज हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा और अयोध्या व बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे समेत राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात। कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी यह कामयाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। राज्य में 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का तय किया लक्ष्य। प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू। ब्याज और सरचार्ज पर 100% छूट, करदाताओं को 3 किस्तों में भुगतान की सुविधा। और सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। वाराणसी, बागपत, गाजियाबाद में कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: अपना कार्ड दे। पिन दे।
1: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं पराया धन। इस फिल्म से आवाज है किशोर कुमार की।

आग गले लग जाए, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों की युगल आवाजों में। और अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में नया दौर फिल्म का ये गीत।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में अभी आप सुन रहे थे नया दौर फिल्म का गीत। और अब आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में मृत्युदंड फिल्म का ये प्यारा सा गीत। कार्यक्रम है रसरंग।

उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में अभी आप सुन रहे थे मृत्यु दंड फिल्म का ये प्यारा सा गीत। और अब आइए सुनते हैं ज्वेल थीफ इस फिल्म का गीत, आवाज है लता मंगेशकर की।

ज्वेल थी फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग संपन्न करने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संसद समीक्षा। कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध व्यक्त करते हुए सदन से वॉकआउट किया। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्षी सदस्यों के बीच हंगामे के बीच इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र की इस जरूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेन देन के सिलसिले में कागजी रिकॉर्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और इसमें डिजिटल रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं था। अब डिजिटल रिकॉर्ड मान्य होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। चर्चा में बीजत के मानस रंजन मंगराज, भाजपा के अरुण सिंह और शंभु शरण पटेल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबीदुरई और डॉ एम धनपाल, रंकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेदेपा के भाष्यम रामकृष्ण, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, द्रमुक सदस्य एल के सुधीश और शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित

में बैंकर्स बुक्स या बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉक्टर कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादिक, बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजत के सुभाषीष खुंटिया, YSR कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, UPPL के प्रमोद बोरो, BRS के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंता कायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कलपुर्जे ऐसे हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता, लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनियों को कर छूट देने का प्रस्ताव है। यह छूट वर्तमान में 5 साल के लिए उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक करने का प्रस्ताव है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्व में भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में UPI लेन देन करने वाले पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। UPI पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांवैधानिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, डॉ मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुजीत कुमार, बाबू भाई जयसंग भाई देसाई, दर्शना सिंह, डॉ धर्मशीला गुप्ता, डॉ दिनेश शर्मा, अधिकारी मायूम शारदा देवी, केसरी देव सिंह झाला, डॉ कल्पना सैनी और रेखा शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। बाद में उच्च सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक राजधानी दिल्ली में पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की सदन में उपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की। सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉ के लक्ष्मण और बाबू भाई जयसंग भाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधाकृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर होता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में 3 अन्य विधेयक खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार है तो सदन की कार्यवाही चलनी देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एनके प्रेमचंद्रन थे जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी 2 मिनट अंदर
ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और

0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी सदन में पेश किया गया, जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि की 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है रस माधुरी।

रसमात्री कार्यक्रम में सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में जब जब फूल खिले इस फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और धुन तैयार किया कल्याण जी आनंद जी ने।

लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाजों में अभी आप सुन रहे थे पारस मणि फिल्म का गीत, और अब आइए सुनते हैं जूली फिल्म का गीत। आवाज है किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और धुन तैयार किया राजेश रोशन ने।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे जूली फिल्म का गीत, और अब आइए सुने मोहम्मद रफी की आवाज में काला बाजार फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने और धुन तैयार किया एस डी बर्मन ने।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे काला बाजार फिल्म का गीत, और अब आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज में मेरा साया इस फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा राजा मेहंदी अली खान ने और धुन तैयार किया मदन मोहन ने। कार्यक्रम है रसमाधुरी।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे मीरा साया फिल्म का गीत, और अब आइए सुनते हैं एक बार फिर लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा गुलजार ने और

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से ये समाचार संध्या सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने

0: आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
2: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
4: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
5: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
6: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा।

0: और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है।

0: तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस में संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। नदीश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
2: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है, जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
3: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता व्यवस्था नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रस्तुत

0: विस्तारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नेत्र निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges opposition to allow Lok Sabha to function for Home Minister Amit Shah's statement on student protest-related issues. Protests intensify in Jharkhand over recruitment exam irregularities after clashes between students and police during assembly march in Ranchi. 80th Independence Day celebrations to showcase Yuva Shakti and its contribution to Viksit Bharat by 2047. National song Vande Mataram to be sung from the ramparts of Red Fort for the first time. Heavy rainfall forecast for Himachal Pradesh and East Rajasthan tomorrow. And FIH Hockey World Cup 2026 begins later this week with new format as quarterfinals are scrapped. India drawn in the men's and women's Pool D. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with the Rajya Sabha returning it to the Lok Sabha after discussions. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025 and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on the 5th of June this year. Replying to the discussion, Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
2: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
1: The Parliament also passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has

0: The Netherlands jointly host the tournament from the 15th to the 30th of this month. The new format means teams will have little margin for error from the outset, with results from the opening pool stage potentially carrying over into the next phase. India's men have been drawn alongside England, Pakistan and Wales in Pool D, while the Indian women will face China, England and South Africa in their Pool D campaign. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges opposition to allow Lok Sabha to function for Home Minister Amit Shah's statement on student protest-related issues. Protests intensify in Jharkhand over recruitment exam irregularities after clashes between student and police during assembly march in Ranchi. 80th Independence Day celebrations to showcase Yuva Shakti and its contribution to Viksit Bharat by 2047. National song Vande Mataram to be sung from the ramparts of Red Fort for the first time. Heavy rainfall forecast for Himachal Pradesh and East Rajasthan tomorrow. And FIH Hockey World Cup 2026 begins later this week, with new format as quarterfinals are scrapped. India drawn in men's and women's Pool D. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। पार्लियामेंट ने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने, सरमायाकारी रागिब करने और रोजगार के मौके पैदा करने के खातिर टैक्सेशन बिल को मंजूर कर लिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यकीन दहानी कराई है कि यूपीआई लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को शवाहिद की हैसियत से कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने से मुतालिक कानून को भी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो तलबा के एहतजाज से मुतालिक मामलात पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के लिए लोकसभा की कार्रवाई चलने दे। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में बेजाब्तगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। तलबा ने पुलिस कार्रवाई के दरमियान रांची में असेंबली की जानिब मार्च किया। 80वें यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 के लिए नौजवान भारत के तावुन को उजागर किया जाएगा। पहली मरतबा वंदे मातरम लाल किले की फसील से गाया जाएगा। कल हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और एफआईएच हॉकी आलमी कप 2026 नए फॉर्मेट के साथ इस हफ्ते बाद में शुरू होगा, जिसमें क्वार्टर फाइनल मुकाबले खत्म कर दिए गए हैं। अब खबरें तफसील से। टैक्सेशन और दीगर कवानीन तरमीमी बिल 2026 राज्यसभा में गौर खोज के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। इस तरह इस बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल चुकी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐवाने बाला में ये बिल पेश किया। बहस का जवाब देते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि टैक्सेशन और दीगर कवानीन तरमीमी बिल 2026 का मकसद भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मुस्तहकम करना, मजीद सरमायाकारी को रागिब करना, रोजगार पैदा करना और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों को फरोग देना है। उन्होंने वाजे किया कि ये बिल यूपीआई सारिफीन पर किसी तरह का टैक्स या लेन देन के चार्जेस आयद नहीं करता। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि छोटे कारोबारियों और ग्राहकों को यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस अदा नहीं करने होंगे। पार्लियामेंट की जानिब से बैंकरों के बही खाता शवाहिद बिल 2026 को भी मंजूरी मिल गई है, क्योंकि राज्यसभा ने भी इसे आज मंजूर कर लिया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बिल पेश किया, जिसका मकसद मौजूदा बैंकिंग निजाम की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को हम आहंग करना है। ये बिल बैंकरों के बही खाते और इसे हम असर डिजिटल बैंकिंग तरीकाकार से मुताबिकत पैदा करने के लिए शवाहिद से मुतालिक कानून फराहम करता है। बैंकरों के बही खाता शवाहिद बिल 2026 में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि बैंकरों के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को शवाहिद के तौर पर काबिल कबूल और मजाज माना जाएगा और वो कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। इस बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि

0: बिल इसलाह पर मबनी कदम है जो मुल्क की तेज रफ्तार पेश कदमी में मदद करेगा। उन्होंने वाजे किया कि बैंकरों के बही खाता शवाहिद कानून को 1891 में तरतीब दिया गया था जब बैंकिंग निजाम पूरी तरह से कागज से चलता था। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आज भारत ने अपनी मईशत को डिजिटल शक्ल देने में काबिल जिक्र तरक्की का मुजाहरा किया है। मोहतरमा सीतारमन ने मजीद कहा कि बैंकिंग और इक्तिसादी लेन देन अब बड़े पैमाने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहे हैं जो अक्सर मोबाइल फोन पर आसान क्लिक के जरिए काबिल रसाई हैं। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि मुल्क का कानूनी फ्रेमवर्क इस तरह तब्दील हो जो इन जदीदकारियों की रफ्तार को बरकरार रख सके। इससे पहले राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामाराई की वजह से कई मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज ऐवान की बिला रुकावट कार्रवाई के सिलसिले में तावुन के खातिर ऐवान के अरकान से जाती तौर पर एक अपील की। जनाब बिरला ने पार्लियामेंट हाउस में मुनाकिदा कारोबारी मशावरती कमेटी की मीटिंग के दौरान ये अपील की। जनाब बिरला ने ऐवान में तातुल पर अपने दुख का इजहार किया। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई चलने देने के लिए ऐवान के लीडरों से एक जज्बाती अपील की कि वो वक्फा इस सवाल की कार्रवाई चलने दें और अहम बिलों पर बहस में हिस्सा लें। जनाब बिरला ने तामीरी बहस बामायने शिरकत और आला तरीन पार्लियामानी रिवायात की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। स्पीकर मौसूफ ने सभी पार्टियों से उनके तआवुन की अपील की ताकि ऐवान की कार्रवाई को बिला रुकावट और मुनज्जम तरीके से चलाया जा सके और लोगों से वाबस्ता मामलात पर एक जामे और सूदबंद बहस हो सके। उन्होंने कहा कि लोगों के मामलात के सिलसिले में इस तरह से इंतजार नहीं कराया जा सकता और उनका इस ऐवान में इजहार किया जाना चाहिए, उन पर बहस होनी चाहिए और उनका हल निकाला जाना चाहिए। पीएसी मीटिंग के बाद पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत तलबा के हालिया एहतजाज और मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस के लिए तैयार है। इस बात की यकीन दहानी कराते हुए कि वजीर दाखिला अमित शाह हर मामले पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, जनाब रिजिजू ने कहा कि शहरियों को हकायक जानने का हक हासिल है। उन्होंने अपोजिशन पर ऐवान में नज्म व जब्त बरकरार रखने और कार्रवाई में मजीद रुकावट न डालने पर जोर दिया। जनाब रिजिजू ने अपोजिशन से ऐवान की कार्रवाई चलने देने की अपील की ताकि वजीर दाखिला अमित शाह तलबा के एहतजाज के सिलसिले में बयान दे सकें और अपोजिशन अरकान की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब दे सकें।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि हुकूमत पार्लियामानी बहस से कभी पीछे नहीं हटी है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि बीएसई मीटिंग के दौरान हुकूमत ने इस मामले पर जामे बहस के सिलसिले में वाजे तौर पर अपनी आमादगी जाहिर की थी। लोकसभा ने ट्रिब्यूनल्स इस्लाही बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में चेयरपर्सन और अराकीन की अहलियत आजादी और तकरूरात और खिदमात को यकीनी बनाते हुए शफाफियत में इजाफा करना है। साथ ही इस बिल का मकसद ट्रिब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज को बेहतर बनाना है। ये कानून नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन के क्याम की भी तजवीज पेश करता है। लोकसभा में नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आराई के दौरान इस बिल को बगैर किसी बहसो मुबाहिसे के मंजूर कर लिया गया। हंगामा जारी रहने पर सदर नशी ने लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर मुमलिकत सुरेश गोपी ने मुत्तला किया है कि हुकूमत ने पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल की आमेजिश से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया है। वजीर मौसूफ ने राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में ये बात कही। जनाब गोपी ने कहा कि मुस्तकबिल में एथेनॉल की आमेजिश बढ़ाने के सिलसिले में कोई भी फैसला सिर्फ तफसीली साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतालिका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका खेल 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों से कल नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर मुलाकात की। बातचीत के दौरान تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں نے وزیر اعظم کے ساتھ کھیلوں کے اپنے تجربات کے بارے میں بات چیت کی. جناب مودی نے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور مستقبل

0: मुकबिल में उनकी कामयाबियों के लिए एतमाद का इजहार किया।
1: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं। और आप विश्वास कीजिए, आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के खिलाफ तलबा की जानिब से एहतजाज के तौर पर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश के सबब आज भी रांची में सूरत हाल कशीदा रही। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए पानी की बौछार, आंसू गैस का इस्तेमाल और लाठीचार्ज किया। इस दौरान जेपीएससी के साबिक चेयरमैन एल क्यांगेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेश है रिपोर्ट।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की क्यादत में हजारों तलबा ने विधानसभा की जानिब मार्च किया और कई बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक कुछ मुजाहिरीन ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी ताकत का इस्तेमाल किया। रांची सिटी के एसपी पारस राणा और एसपी रूरल गौरव गोस्वामी ने तलबा से अमन बरकरार रखने की अपील की और कहा कि पुलिस ने तहम्मुल से काम लिया है। मुजाहिरीन जे एस एस सी सी जी एल इम्तिहानात के ताल्लुक से सीबीआई के जरिए गैर जानबदाराना छानबीन कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान झारखंड के सीआईडी ने भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के सिलसिले में जेपीएससी के साबिक चेयरमैन एल क्यांगटे को गिरफ्तार किया है। दिफाई उमूर के मरकजी वजीर मुमलकत जनाब संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की नुक्ताचीनी की है। नीज सीबीआई और ईडी के जरिए छानबीन कराए जाने की मांग को दोहराया है। इस दौरान हजारीबाग से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनीष जायसवाल ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से बात की और इस मामले की सीबीआई के जरिए जांच कराने की तलबा की मांग को दोहराया। पुलिस कार्रवाई और जेपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: इस साल 80वें यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत की तामीर में नौजवान भारत के तावुन के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने को उजागर किया जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि तारीफी लाल किले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी तकरीबात की क्यादत करेंगे। वजीर आजम कौमी परचम फहराएंगे और मुल्क से खिताब करेंगे। पहली मरतबा यौम आजादी की तकरीबात में लाल किले की फसील से कौमी गीत गाया जाएगा। मुल्क भर में जारी हर घर तिरंगा मुहिम में नुमाया तौर पर तेजी आ रही है और ये जिंदगी के सभी शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को मुल्क के कौमी फख्र और इत्तेहाद के जज्बे का मिलकर जश्न मनाने की तरकीब दे रही है। हर घर तिरंगा मुहिम इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी और ये इस साल वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह से मुताबिकत रखती है, जिससे सभी शहरियों के लिए ये एक पुरजोश मौका बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी से इस मुहिम में जोशो खरोश के साथ शामिल होने और विकसित भारत की तामीर के सिलसिले में अपने ताउन के मजमूई अज़्म का इआदा करने पर जोर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी शहरियों से इसमें शामिल होने और तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली और बड़े पैमाने पर वंदे मातरम गाकर और तिरंगा फहराकर और हर घर तिरंगा .com पर सेल्फी अपलोड करके जश्न मनाने की अपील की है। उधर जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर सभी अजला में तिरंगा यात्रा और हुब्बुल वतनी के प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। ईरान की वजारत खारजे के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आबनाए हुरमुस तब तक नहीं खुलेगी जब तक वॉशिंगटन तेहरान के खिलाफ अपनी बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा। तेहरान में आज हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए बकाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली फौज की जारहियत की वजह से तवानाई की सप्लाई की अहम बहरी गुजरगाह आबनाए हुरमुस को बंद किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आबनाए हुरमुस का दोबारा खोला जाना अमरीका और इसराइली हुक्काम की जानिब से ईरान पर आयद की गई शराइत पर मुनहसिर है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल हिमाचल प्रदेश और मशरक राजस्थान में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, वस्ती, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। एफआईएच मर्दों और खवातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के मुकाबलों में ढांचा जाति तब्दीली की गई है। روایتی کوٹر

0: फाइनल मरहला खत्म कर दिया गया है और दो क्रॉस ओवर पूल्स के जरिए टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। बेल्जियम और नीदरलैंड मुश्तरका तौर पर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। ये टूर्नामेंट इस माह की 15 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक जारी रहेगा। नए फॉर्मेट के तहत टीमों के लिए इब्तिदा से गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी, क्योंकि इब्तिदाई मरहले के नतीज अगले मरहले पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। भारतीय मर्दों की टीम को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल डी में रखा गया है, जबकि भारतीय खवातीन खिलाड़ी पूल डी में चीन, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों से मुकाबला करेंगे। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट ने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने, सरमायाकारी रागिब करने और रोजगार के मौके पैदा करने की खातिर टैक्सेशन बिल को मंजूर कर लिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यकीन दहानी कराई है कि यूपीआई लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को शवाहिद की हैसियत से कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने से मुतालिक कानून को भी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो तलबा के एहतजाज से मुतालिक मामलात पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के लिए लोकसभा की कार्रवाई चलने दे। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में बेजाब्तगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। तलबा ने पुलिस कार्रवाई के दरमियान रांची में असेंबली की जानिब मार्च किया। और 80वें यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 के लिए नौजवान भारत के तावुन को उजागर किया जाएगा। पहली मरतबा वंदे मातरम लाल किले की फसील से गाया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। अंजुमन कार्यक्रम में सुनिए मेहदी हसन की गाई ये गजल।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई ये गजल अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंजुमन में। अब आइए सुने मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की गाई ये गजल।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। सुनिए इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज़।

आशा भोसले के गाए इस गजल के साथ ही गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
2: क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 226 डॉक्टर लक्ष्मण गौरव।
0: प्रश्न संख्या 226, क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं? ख इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 24 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है? और ग इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?
2: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
3: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ अवर बिलोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, India's power sector has undergone a historic transformation with a strong focus on ensuring affordable, reliable and sustained electricity for every year. And due to Modi ji government's policies, states like Telangana has witnessed rapid growth in industries, data centers, urban infrastructure leading to increasing electricity demand, sir, which has significant potential for solar energy, including decentralized and agricultural solarization. So through you, I request the Honorable Minister to explain how the proposed reforms will encourage greater adoption of distributed renewable energy, battery energy storage and smart distribution system in states like Telangana while ensuring the financial sustainability of DISCOMs. Thank you, sir.
0: Shri Manohar Lal, Vidyut Mantri.
4: Sabhapati Mahoday, 2026 इसको तैयार करने में डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की फाइनेंशियल फैसिलिटी मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफ टॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान, रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस, इसमें भी सेल सेल करने का प्रावधान रखा गया है। सेल लोकेटेड स्टोरेज अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हों अथवा पंप स्टोरेज के हों, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरमेंट

की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है। और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है। अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके, इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने, ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही, यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब से हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म को इसको बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है, जिसको सर्कुलेट किया गया था और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है, ये फाइनलाइज करने के राह पर है। और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया, डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है। डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे, तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे। और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है, स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है, चाहे डाटा सेंटर हो अथवा ईवी चार्जिंग हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है। इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ, यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय उसका यूज ज्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड इसकी शिफ्ट की जाए, तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा सके। मान्यवर, डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, ये कंसर्न है। सभी डिस्कॉम ये लगभग घाटे में जा रहे हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए, इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी इसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर इसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लान परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो। ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के संरक्षण को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई है। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे, वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल

0: जी पावर सिस्टम इसके ऊपर डाला जाएगा और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, ना पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी, इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। तो मान्यवाद, ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको अलाउ किया है तो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है। कोई आएगा तो अच्छा है, पेड के लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक पूछा है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री सत्रम सिंह सांडो जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सभापति महोदय। ये विषय जो कि पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है, वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती है प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रख करके ध्यान में रखकर के बनाती हैं। पंजाब के लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्काउंट की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब की डिस्काउंट की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता आरईसी से पीएससी में थी, लेकिन आरईसी पीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहां तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो उतरते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम या पंजाब की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ती है। आगे न बढ़ने के कारण से, सेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूति पर सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा प्रयोग करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्युटी पाई गई, उस एम्बिग्युटी के कारण से उनका केस एप्टल में चला गया। एप्टल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्टल का 16 अगस्त को 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए।
1: श्रीमान विजय खंडाकालिया जी, श्रीमान विजय खंडाकालिया जी,
3: धन्यवाद जी, धन्यवाद चेयरमैन जी। सर, पूरी माता ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, सर दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। First in my bloodline, I'm witnessing this green hydrogen plant in our own district. So the project envisages an investment of approximately 1.85 lakh crore, including 20 gigawatt of renewable energy capacity and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500

0: TDP of green hydrogen derivative. So my question here is, I want to ask the Honorable Minister, if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the Central Transmission Utility and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the planned capacity of future expansion.
1: Honorable Minister. सभापति महोदय, अच्छे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया, कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो ने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूँ बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद हम ROW का जो सेक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की है। और नई गाइडलाइंस मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17 अठारह स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहाँ की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहाँ कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहाँ इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहाँ कहीं भी विषय कर रहे हैं वो प्रश्नों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर दे
2: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रभु सर मनोज कुमार झा तो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी
3: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है, या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है, सादर प्रणाम।
1: आदरणीय मिनिस्टर, आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है, और आज भी हमारी तैयारी है तो 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है, अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष में 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस तैनात है, लेकिन पावर सफिशियंट हम अपने देश के अंदर है। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर का जो ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है, और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ का जहाँ तक विषय है कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो कम जवाब देंगे।
4: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
5: अभी आप सुन रहे थे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में सुनिए लीडर फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और साथियों की मिलीजुली आवाजों में। इस गीत को लिखा शकील बदायूनी ने और धुन तैयार किया नौशाद ने।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की युगल आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे लीडर फिल्म का गीत। और अब आइए सुने कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ की मिलीजुली आवाज़ों में कर्मा फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और धुन तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कर्मा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी शोभा गुरटू का उपशास्त्रीय गायन। पहले सुनिए विदुषी शोभा गुरटू की गाई ये कजरी। आपके साथ तबले पर संगति की है यू निजामुद्दीन ने, निजामुद्दीन खान ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विदुषी शोभा गुर्टू का उपशास्त्रीय गायन। अभी आपने सुना इनकी गाई कजरी। आपके साथ तबले पर संगति के थी उस्ताद निजामुद्दीन खान ने। अब सुनिए विदुषी शोभा गुर्टू की गाई एक और।

0: अभी आप सुन रहे थे विदुषी शोभा गुरडू का उपशास्त्रीय गायन। इसके अंतर्गत आपने सुनी कजरी। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
2: The bill, among various other things that it wants to do.
3: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: Permits authentication through manual, digital and electronic signatures.
1: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
4: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियांग

0: occasion even more heart-stirring for every patriot. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. 47 people were killed and dozens of buildings collapsed in cities across western Colombia today after a powerful 7.4 magnitude earthquake struck. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। कल प्रातः 5:53 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: building a Viksit Bharat. 47 people were killed and dozens of buildings collapsed in cities across western Colombia today after a powerful 7.4 magnitude earthquake struck. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। कल प्रातः 5:53 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।